एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गयी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। कंपोस्ट बनाने की विधि पर जानकारी दे रही हैं सुनीता अग्रवाल।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कंपोस्ट खाद के लाभ पर। श्रोताओं, कंपोस्ट खाद फसल व पौधे के पोषक तत्वों में उच्च जैविक उर्वरता संचार करता है, जो मिट्टी की भौतिक विशेषताओं में सुधार लाता है, खेत में जैव अवशिष्ट को कम करता है और रोग जनितों को खत्म करता है। इस तरह कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपोस्ट के लिए उस स्थान का चयन करें जहां हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो और मिश्रण या कचरा ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। खाद बनाने के लिए जगह का चयन जमीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर जमीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस जगह से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर परत बनाएं, उसमें पानी से गीला करके उस पर कचरा डालना चाहिए। इसी तरह से यदि गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी की परत बनाएं और पानी का छिड़काव करें। यदि हो सके तो अधिक नाइट्रोजन के लिए मिश्रण में पौधे व फसल के अवशेषों को ज़्यादा डालें, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा मिल सकेगी। मिश्रण को डालते समय ध्यान दें कि उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दबाकर गड्ढे को भरना चाहिए और ऊपर गोबर का लेप लगा देना चाहिए। इसके बाद उस पर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बना देना चाहिए। कचरे को नमी युक्त करके गड्ढे में डालना चाहिए और 4 से 5 महीने के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। कंपोस्ट खाद प्रभावी तब होता है जब में ऐसी परिस्थितियों में बनाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के नाम पर मिट्टी में छोटे छोटे जीवों का विकास का समर्थन करते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को और पौधे और पशुओं के अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी का उत्पादन होता है और कुछ दिनों के बाद तैयार कंपोस्ट का ढेर गर्म हो जाता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें भाप दिखाई देता है। कचरे की सामग्री के रूप में विघटित होने पर ऐसे पदार्थों में पोषक तत्व कुछ होते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधे में किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद को फसल बुआई से उसे 4 सप्ताह पहले भी नमी युक्त खेत में डालना चाहिए और उसको किसी भी यंत्र से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए ताकि पोषक तत्व भूमि में अच्छी तरीके से प्रगतिशील हो सके। यह फसल के अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है जो किसानों को अपने खेतों से ही मिल जाया करती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक टूटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे फसल के समर्थन मिलता है और पानी की बचत भी होती है। पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना सबों के हित के लिए कार्य है, किसानों के लिए, मानव सेहत के लिए और साथ ही पर्यावरण के लिए। तो फिर किसान भाइयों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। और आज की जानकारी यही।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 212।
3: नंबर 212 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत, हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म, मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है, न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस कांड। समय हो चुका है चिंतन कार्यक्रम का। चिंता नहीं चिंतन करें, इस विषय पर आप ये सुनते हैं निर्मला तिवारी को।

चिंता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य चिंता को स्वयं ही पैदा करता है। जितने लोग उतनी चिंताएं। हर इंसान की अपनी चिंताएं हैं, अपने विषय हैं। कोई किसी बात को लेकर चिंतित है तो कई किसी अन्य बातों को लेकर। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई अपने दुखों से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी हो जाता है। तभी तो किसी का दुख किसी के लिए सुख है तो किसी का सुख किसी के लिए दुख। चिंता सागर की उस सतह की तरह है जहां पर सदा उथल पुथल मची रहती है। लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं। चिंतन सागर में उस ठहरे तल का नाम है जहां शांति रत्न और खजाने छिपे हुए हैं। चिंता यानी संसार और चिंतन यानी स्वयं। चिंता करने वाला सदैव दूसरों में उलझा रहता है। कमी स्वयं में नहीं दूसरों में ढूंढता है। अपनी असफलता और दुखों का जिम्मेवार भी दूसरों को ठहराता है। सुख के लिए स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को परिवर्तित करने में लगा रहता है। चिंतन में व्यक्ति स्वयं को टटोलता है, अपनी नजरें स्वयं पर टिकाता है, अपनी जांच पड़ताल करता हुआ कमी किसी दूसरे में नहीं बल्कि अपने आप में देखने की कोशिश करता है। चिंता करने वाले की यात्रा सांसारिक है तो चिंतन करने वाले की यात्रा अंतर यात्रा। चिंता श्रृंखलाबद्ध समस्याओं की निरंतरता का नाम है। तभी तो एक समस्या खत्म होती नहीं, उसके साथ अनेक प्रश्न करना उचित हो जाता है। किंतु हर बात पर चिंता करना यह तो बेकार है। प्रसिद्ध विचारक बीचर का भी मानना था कि व्यक्ति काम से नहीं मरता है, चिंता उसे मार डालती है। दरअसल हमें जितना मिलता है हम उससे अधिक और अधिक की आस लगाए रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों के पास देखकर ईर्ष्या करते हैं और इसी आशा में घुलते रहते हैं कि हमें कैसे प्राप्त हो जाए सब कुछ। और यह चिंता कई परेशानियों का कारण बन जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो फिर चिंता के लिए फालतू तो समय नहीं होता है और आप चिंता से दूर होते हैं। चिंता कुछ हद तक सही है। समस्याओं का हल खोजा जाना चाहिए किंतु उसे मनोरोग नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है, चिंतन करें चिंता नहीं।

चिंता नहीं चिंतन करें। अभी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को चिंतन कार्यक्रम के तहत, और अब समय हो चुका है भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना का। इस कार्यक्रम में यही सुनते हैं अनूप जलोटा को।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना के साथ आप सुन रहे थे अनूप जलोटा को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव, इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बरनवाल से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है श्री एस के लाल।
1: मित्रों, आज के समय की यदि हम बात करें तो जमाना मोबाइल का है। हर समय हम मोबाइल के सहारे रहते हैं, सर्फिंग करते हैं और ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पर निकलता है। ज़्यादा समय तक यदि हम मोबाइल देखते हैं तो आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ होना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों में, जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, वो मोबाइल देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी आँखों की विकृतियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो लगातार स्क्रीन टाइमिंग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर बच्चों पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बरनवाल। डॉक्टर साहब स्वागत।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आए दिन हर समय लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, आँखों में जलन, माथे में दर्द और भी अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
2: देखिए, एक बात तो है कि अभी के समय में बिना मोबाइल का आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए सम्मिलित है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसकी जो खामियां हैं वो भी आपके सामने है और हर घर में सभी लोग इससे परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है आप आँख को बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं, उसके कारण कॉर्निया ड्राई होता है और मेन कारण कॉर्निया ड्राई होना ही है बाकी आँखों के लक्षण का। तो अगर हम आँख को ड्राई होने से बचा सकते हैं तो फिर मोबाइल कोई हानि की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बचा पाते हैं और लगातार स्क्रीन टाइम पौन घंटे एक घंटे या उससे अधिक होता है तो उसकी जो भी खामियाँ हैं उसे हम पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरू में तो लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धुंधलापन बढ़ने लगता है। अगर हम उसका पावर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसका विजन 6x6 नॉर्मल विजन है, लेकिन उसे शिकायत है कि हमें धुंधलापन हो रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री और लेंगे तो दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि वह व्यक्ति या बच्चा मोबाइल का उपयोग अधिक कर रहा है और दूसरा उसका खान पान प्रॉपर नहीं है। ये दोनों खामियां हैं, खान पान प्रॉपर नहीं होना और मोबाइल का देखना, ये दोनों उस आँख की परेशानी का मुख्य कारण है। और छोटे बच्चों में तो इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है और उसी कारण लगता है माँ बाप को कि आँख पे पावर आ गया है। और हमारी प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं दिखाने के लिए, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब देखेंगे, चश्मा लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक उसके लिए आवश्यक प्रिकॉशन नहीं लेगा

0: या बच्चे नहीं लेंगे तब तक उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं आराम होगा। तब दो तीन बातें हैं, एक तो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। कई बार जैसे बैंकिंग सर्विसेज में, ऑफिशियल में, आजकल मैक्सिमम लोग सब नेट से ही काम होता है, बैंक मोबाइल और लैपटॉप से ही काम होता है, तो ये प्रैक्टिकल है कि उन्हें काम करना है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि वो काम अगर लगातार कर रहे हैं बिना प्रिकॉशन लिए तो उनका लाइफ स्कैन, आई का लाइफ स्कैन काफ़ी हद तक कम जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर 45-50 मिनट में वो 2-4-5 मिनट गैप करें, उस गैप में आप स्क्रीन से अपने आप को हटाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप देहात में कहते हैं आँख मारना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दैट मीन्स कि आप गेजिंग या टक एक टक ताकना, उसे आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश करिए कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, तो कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आपको आँख में पेन नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों से हम पूछते हैं कि उसका विजन नॉर्मल है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, तो अगला क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि क्या खा के आए हो, तो उसके गार्जियन का भी हंसता है कि बच्चा भी हंसता है, और नहीं बोल पाता है तो माँ को देखता है क्या खाए हैं नहीं पता है। तो जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जब उसको ये समझाते हैं कि खाना आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चश्मा टेस्ट करवाना, तब पाते हैं कि या तो चाय रोटी खा कर आया है, या पास्ता खा कर आया है, या फास्ट फूड खा कर आया है, और ये लगातार खाता रहता है। तो बीच में हमारी सलाह उन लोग की रहती है कि भाई ठीक है तुम सब खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी फल पसंद है उसको खाओ, जो भी सब्जियां पसंद है उसको खाओ, और अगर नहीं पसंद है तो माँ को बोलते हैं कि भैया गाजर टमाटर और इस टाइप का जो भी है उसको पीस के पिला दो बच्चे को, कोई उपाय नहीं है उसका। और कई बार ये नौबत बच्चे तैयार नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अभी बच्चे इतने तेज हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग अगर उनका किया जाए तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन तैयार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन काउंसलिंग करने की आवश्यकता है आज के समय, काउंसलिंग ना डॉक्टर के पास समय है ना माँ बाप के पास समय है। उन्हें भी लगता है कि आसानी से मोबाइल दे दो, बच्चा अपना इंगेज हो गया, अब अपना काम करते रहो। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जो 6 महीना साल 2 साल 3 साल के बाद आपको दिखाई पड़ने लगता है। हमारी अपनी मान्यता है और अनुभव है कि सारे ऑफिशियल्स स्टाफ से काम चाहते हैं, आप अपना काम करते रहिए, अगर 5 मिनट 7 मिनट इधर करते हैं ना कहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फाकी मारते हैं। तो दूसरा कि आप अगर ब्रेक करना है और नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बीच में पानी पी लें, कभी काम टॉयलेट चल जाएं, बाथरूम चल जाएं, एक आध अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर लें, इस तरह करके हम टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पाते हैं कि अभी नए युग में, चूँकि सरकारी जॉब बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन जॉब के पीछे पागल है। हम देखते हैं कि 28 साल 30 साल 32 साल हो गया है, लड़कियां लड़के बहुत क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? कंप्यूटर से तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? तो मोबाइल पे, क्यों अधिकांश घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तब पूछते हैं फिर नेक्स्ट रात को क्या कैसे करती हो, सो के पढ़ती हो, सो के पढ़ते हो? तो हाँ सर। तो उस हालत में उनके लिए सलाह होता है कि तुम कोशिश करो एक टाइम मेंटेन करने का, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो, और सो कर नहीं बैठ कर मोबाइल देखो बीच में इंटरप्शन। तो इस तरह करें कोशिश करते हैं उन लोग कंसोल करने का, कोशिश समझाने का, अधिकांश केस में रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज का दो शिकायत होती है, एक होता है आँख में दर्द, दूसरा होता है माथे में दर्द। और जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, चेंज करते हैं, इनकी शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ लोग का जेन्युइनली ड्राई आई सिंड्रोम होता है जिसमें उसका आंसू कम बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम बाहर से आंसू जोड़ते हैं इन दी फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, और वो हम डालते हैं जिससे कॉर्निया हमारा वेट भींगा हुआ रहे। इस तरह हम मरीज को समझाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दूर करते हैं उसकी से।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राय लोग सोने के समय रात में मोबाइल देखते हैं और खासकर अंधेरे में मोबाइल देखते हैं रातों में, ये कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे
0: ये
1: आँखों को?
0: बहुत नुकसानदेह है। आजकल आप देखोगे कि पेपर में या मीडिया में बीच में हेल्थ संबंधी जो आता है प्रोग्राम, उसमें बताता है कि रात को आप मोबाइल एकदम मत देखो, अंधेरा में देखने की बात ही नहीं है, उसके बदले आप म्यूजिक सुना करो। ये रात को देखने का ही कारण है कि अधिकांश लोग आजकल डिस्निया या एपनिया लॉस ऑफ स्लीप से परेशान है। मैक्सिमम लोग को अच्छी नींद नहीं आती है और नींद नहीं आने के कारण नेक्स्ट डे वो फ्रेश नहीं फील करता है, उसको हेडेक होता है, परेशानी होती है। तो अगर वो टाइमिंग मेंटेन करे, सोने के पहले मोबाइल नहीं देखे, तो इसका बहुत सारा फायदा उसको होगा। और साथ में सीजनल जो भी साग सब्जी या फल उपलब्ध है उसे वो जरूर ले। और सीजनल साग सब्जी या फल बहुत महंगे नहीं हैं, महंगे जो फल है उसकी आवश्यकता नहीं है, सस्ता फल उतना ही फायदेमंद है जितना महंगे फल फायदेमंद है।
1: जी, छोटे बच्चे के माता पिता को आप क्या कहेंगे कि बच्चों पर नजर रखें और लगातार मोबाइल।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत बढ़ता है स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्नवाल, भेंट करता थे श्री एस के लाल। इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में।

0: आधिकारिकयात्रायाः समये टैलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः, उद्योगनेतारः, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगतास्सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभरात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान

कुछ ही पलों में 7:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग आप सुनेंगे 7:30 पर। कलाकार होंगी श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी, इनसे आप सुनेंगे राग ठुमरी खमाज। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे रांची केंद्र से। 8:45 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गुंजन। सुबह के 9:00 जोहार पलामू कार्यक्रम आप सुनेंगे। 9:10 पर हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे कला के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत श्री आर माधवन पर आधारित कार्यक्रम। 9:30 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। सुबह के 10:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 1:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

1:20 पर मुंबई के अंदर से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। दिन के 2 बजे दिल्ली के अंदर से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार और 2:30 पर मुंबई के अंदर से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 2:55 पर हम जुड़ेंगे रांची के अंदर से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम के तहत मन चाहे गीत। 4 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 5 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रमों के तहत आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर हमारे स्टूडियो से होगा कार्यक्रम विवरण। पांच बजकर 35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे युवाणी। चर्चा होगी बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पर। सुप्रिया पांडे की वार्ता होगी सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे। 6:30 पर जननी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम जननी। इसके तहत आप सुनेंगे चर्चा, महिलाएं अपने बच्चों के पोषण का रखें ख्याल और आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ। पूनम सहाय की वार्ता होगी जल जंगल और जमीन एक अभिन्न संबंध। शाम 7 बजे रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर गीत गजलों का कार्यक्रम होगा स्वरांजलि। 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा महुआ। कलाकार होंगे भरत सिंह भारती और साथी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे चित्रपट से कार्यक्रम। 8:30 पर गीत संगीत कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे सोनू निगम को। 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे। 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर भारती के कार्यक्रम

सुनेंगे। रात्रि 10 बजे फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा नमस्कार। सुप्रभात बच्चों, आज है रविवार का दिन और रविवार के दिन आपका जो डेली रूटीन है उससे हटकर आप कुछ करते हैं, चाहे अपने माता पिता के कामों में उनकी मदद करते हैं, बागवानी करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ आप या तो खेलते कूदते हैं या फिर कोई पिकनिक करते हैं या दोस्तों के घर आते जाते हैं। तो इन कामों के अलावा बच्चों आपको चाहिए कि आप अपने छात्र जीवन में महापुरुषों की जीवनी को भी अवश्य पढ़ें, यानी जो भी महान व्यक्तित्व हैं हमारे देश के विदेश के उनकी जीवनी अवश्य पढ़ें। उनकी जीवन गाथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इससे उनके चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच का विकास होता है। महापुरुषों के संघर्ष और सफलता की कहानियाँ बच्चों को बड़े सपने देखने और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देती हैं। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से बच्चों आपको कई लाभ होते हैं, जैसे नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। महान लोगों के जीवन से बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी, दया और परोपकार जैसे गुणों को सीखने का अवसर मिलता है। प्रेरणा और संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। बच्चों को यह समझ आता है कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। महापुरुषों के जीवन के उतार चढ़ाव पर कभी हार नहीं मानना चाहिए, यह सीख भी महापुरुषों के जीवन से हमें मिलती है और बच्चों को भी मिलती है, जिससे बच्चे जीवन के उतार चढ़ाव से आगे चलकर संघर्ष करना सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जीवन से हार नहीं मानते। साथ ही गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण में भी आपको सहायता मिलती है। महान हस्तियों के जीवन के उद्देश्य और उनकी कार्य शैली को जानकर बच्चों को अपने जीवन में एक सही दिशा और लक्ष्य तय करने में काफ़ी आसानी होती है। उनकी जीवनी आपको लक्ष्य निर्धारण में काफ़ी सीख देते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय का सदुपयोग होता है। महापुरुषों की दिनचर्या और उनके कार्यों को पढ़कर बच्चे अनुशासन का महत्व समझते हैं और बच्चों में और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो आप इनकी जीवनियों को अवश्य पढ़ें। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों की जीवनियों को आप पढ़ते हैं तो आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ आती हैं और आप शीघ्र ही महान व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाने लगते हैं, क्योंकि आप में वो अच्छाई खुद ब खुद आ जाती है। तो महान व्यक्तियों की जीवनियों को बच्चे अवश्य पढ़ें और उनसे सीख लें और जीवन की अपनी दिशा है उसे सही राह की तरफ मुड़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दौर आएंगे जिसमें आपके भटकने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन जब आपको अच्छे संस्कार दिए जाएंगे और जब आप महान व्यक्तियों की जीवनी को पढ़ेंगे, उनके जीवन के संघर्षों को पढ़ेंगे, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में आप जब जानेंगे, तो आप भी अपने जीवन में संघर्ष से कभी नहीं घबराएंगे, जीवन के उतार चढ़ाव से

भी अपने को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज के बाद आपको अपने कोर्स की किताबों के अलावा या जो आप कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, चुटकुला की किताबें पढ़ते हैं और भी तरह तरह की पत्र पत्रिकाएं जो आप पढ़ते हैं, उसके अलावा आपको महान व्यक्तियों की जीवनियां भी पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए।

जी हाँ बच्चों, आप देश के सिपाही हैं और जब आप महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आप उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित होते हैं। सोच और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं उनकी जीवनियाँ। प्रेरणा मिलती है आपको। बच्चे जब महान व्यक्तियों के संघर्ष और सफलता की कहानियों से प्रेरित होकर बड़े लक्ष्य निर्धारित करना सीख जाते हैं। अच्छे संस्कार आपके अंदर विकसित होते हैं। ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन, करुणा और देश प्रेम जैसे गुणों को अपनाने की आपको प्रेरणा मिलती है। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चों। यह जानकर कि महान लोगों ने भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, बच्चों में चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा होता है। संघर्ष का महत्व समझ में आता है। बच्चे सीखते हैं कि असफलता सफलता की राह का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से मंजिल प्राप्त की जा सकती है। साथ ही नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। महान व्यक्तियों के निर्णय, कार्यशैली और समाज के प्रति उनके योगदान से नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं और आपकी सकारात्मक सोच भी विकसित होती है। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और समस्याओं का समाधान खोजने की आपकी आदत बनती है। ज्ञान और सामान्य जानकारी बढ़ती है। इतिहास, विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आपको प्रेरणा मिलती है। बच्चे अपने रुचियों और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें निखारने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपको महान व्यक्तियों की जीवनियाँ अवश्य पढ़नी चाहिए। आप विवेकानंद को पढ़ सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, भगत सिंह, होमी भाभा, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान विभूतियों की जीवनियों को आप पढ़ सकते हैं और देश के प्रति अपने जज्बे को, अपने कर्तव्य को आप निभा सकते हैं।

इस गीत के साथ ही बच्चों आज के बाल सभा कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से राग ठुमरी खमाज़।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कलाकार हैं श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। आपने सुनियान से ठुमरी, राग ठुमरी में। अब समय हो चुका है समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, और सुबह के 8:30 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। आइए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
3: इंडियन इकोनॉमी,
4: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1% है।
3: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली निम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति

0: सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली विमनई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
5: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीन की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सूखे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक सिखाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू।

0: गौतम किशोर रवि की डिमांड अवधि पूरी हो चुकी है। सीबीएसई ने कक्षा दसवीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा दसवीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। सीबीएसई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जेएसएससी की झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा आज रांची जिले के 127 केंद्रों पर आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। धनबाद में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स DMTF ने कार्रवाई कर धनबाद के एना कोलियरी और कतरास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान में 40 वाहनों को जब्त किया। इस मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
1: एना कोलियरी और कतरास कोलियरी में हम लोग के द्वारा जांच किया गया संयुक्त रूप से, और उसमें कुछ मोटर व्हीकल के अंतर्गत वायलेशन पाया गया और माइनिंग के द्वारा भी कुछ चालान में विसंगति पाई गई, जिसके आरोप में लगभग 40 गाड़ियों को सीज करके थाना को सुपुर्द किया गया है और वाहन स्वामियों से कागजात की मांग की गई है वाहन की, और कागजात प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: सिमडेगा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सन्हा ने कहा कि लोग अपने वाहनों का बीमा अवश्य कराएं, इससे वाहन मालिक परेशानी से बचेंगे, वहीं दुर्घटना पीड़ितों को न्याय भी मिल सकेगा।
2: हमारा स्कीम DLSA का वो जन जन तक पहुंच पाया है, और इस संबंध में मैंने आज मोटर व्हीकल एक्ट पर अपनी बातें रखी और खासकर इस बात पर जोर दिया बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं चले, उसके लिए मैंने PTO साहब को भी निर्देशित किया है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे राज्य जिले में एक भी गाड़ी ऐसी न हो जो कि इंश्योरेंस के बिना चले।
0: मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार रांची में आज मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 20 जुलाई के लिए विभाग ने कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत रांची के खेलगांव, BIT मेसरा और जैपवन मैदान में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अगले चरण में जगह बनाई। राज्य परियोजना पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग ने कहा कि सुब्रतो कप जैसी प्रतियोगिताएं स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मंच प्रदान करती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा विश्व कप के आज होने वाले फाइनल मुकाबले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल का रोमांच, दर्शकों की फ्री एंट्री पर टिकट लेना होगा। हिंदुस्तान ने कोयले की गैस से दम घुटने से मां बेटे की मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, निवेश आकर्षित करने में झारखंड इमर्जिंग श्रेणी में, प्राकृतिक संसाधन राज्य की ताकत पर कारोबारी माहौल बनाना चुनौती। दैनिक जागरण ने

कम उम्र के बच्चों के हृदय रोग के इलाज की स्थायी सुविधा झारखंड में ही कराएगी उपलब्ध। झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना। धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बम्बई का बाबू से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

देश परदेश फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है धूल का फूल, आवाज महेंद्र कपूर की।

जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। मेहनत ही सफलता का रास्ता है, इससे कभी नहीं भागना चाहिए। जी हाँ, आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का रास्ता है, इससे कभी भागना नहीं चाहिए। बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। 20 जुलाई यानी कि कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम की इस जानकारी के बाद आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आइए कुछ मुख्य खबरों पर डालते हैं एक निगाह। डूरंड कप के आयोजन से राज्य में फुटबॉल संस्कृति को नई ऊर्जा मिलेगी, यह कहना है सुदीप विज का। 26 जुलाई से रांची में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होंगे मुकाबले। दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेट ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ ट्रॉफी शोकेस समारोह। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप 2026 की तीनों ट्रॉफियां शनिवार को रांची पहुंचेंगी। दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेट ऑडिटोरियम में आयोजित ट्रॉफी शोकेस समारोह के साथ राजधानी में डूरंड कप का औपचारिक आगाज हुआ। समारोह में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि तथा IB-23 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में ड्रोन कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी का भव्य प्रदर्शन किया गया। सेना के अधिकारियों, खेल विभाग के प्रतिनिधियों, फुटबॉल खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों ने ट्रॉफियों का स्वागत किया। इस अवसर पर ड्रोन कप के गौरवशाली इतिहास और भारतीय फुटबॉल में इसके योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की सफल मेजबानी कर रहा है। ड्रोन कप जैसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का रांची में आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से राज्य में फुटबॉल संस्कृति को नई ऊर्जा मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को देश के शीर्ष फुटबॉलरों से सीखने तथा प्रेरणा लेने का अवसर भी मिलेगा। फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आने वाले दिनों में राज्य भर में अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मेदिनीनगर में अधिकतम 41.6 और न्यूनतम 25.0 डिग्री तापमान रहा और छिटपुट बारिश अभी भी कहीं कहीं जारी है। इस मॉनसून में अब तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। इसी के साथ आज के जोहार पलामू कार्यक्रम से हम अनुमति चाहते हैं।
1: जोहार पलामू।

और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से। दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कला के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत श्री आर माधवन पर आधारित कार्यक्रम।

0: को हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा वरिष्ठ कवित्री सुश्री सरोज शर्मा की पुस्तक मैं अभिव्यंजना काव्य संग्रह का लोकार्पण, परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का आयोजन अकादमी रोहिणी स्थित सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले, कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, श्री सुधाकर पाठक तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में सुश्री ममता किरण, डॉक्टर आरती लोकेश एवं डॉक्टर सविता चड्ढा की गर्मामयी उपस्थिति रही। दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के सम्मान के बाद कार्यक्रम को विधिवत रूप से समारंभ किया गया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने कहा कि सरोज शर्मा जमीन से जुड़ी हुई एक संवेदनशील कवित्री हैं। उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली नगर निगम में सरकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और सेवानिवृत्ति के बाद वे पूर्ण रूप से साहित्यिक साधना में संलग्न हैं। साथ ही वे हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार ममता किरण ने कहा कि भले ही यह सरोज जी की पहली पुस्तक है, किंतु वे लंबे समय से साहित्यिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही हैं। आज जब डिजिटल युग में लोग रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और कुछ लाइक्स व्यूज पाकर वायरल हो रहे हैं, ऐसे समय में धीमी गति से अपने मनोभावों को लिखना और पुस्तक के रूप में लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अबू धाबी से शिक्षाविद एवं कवित्री डॉक्टर आरती लोकेश ने सरोज जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अबू धाबी में हिंदी भाषा की स्थिति पर अपना सारगर्भित विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सविता चड्ढा ने सरोज जी की पुस्तक पर अपना समीक्षात्मक मंतव्य रखा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने कहा कि पुस्तक प्रकाशित करना एक चुनौती भरा काम है। सृजन करने में हम सभी को आनंद आता है, किंतु संकलित करके पुस्तक के रूप में लाना एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए कई रचनाकारों की पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती। सरोज जी ने अपने अनुभवों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया, जो कि सराहनीय है, किंतु यह जानकर हैरानी होती है कि यह उनकी पहली पुस्तक है। लिखने के लिए तो वे काफी वर्षों से लिख रही हैं, किंतु जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने रचना कर्म को समय नहीं दे पाते। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कहा कि सरोज जी की पहली पुस्तक है और पहली पुस्तक का स्वागत किया जाना चाहिए, उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कविता की जादू पर बात करते हुए कहा कि कविता सीधे सपाट शब्दों में नहीं, बल्कि कविता इशारे इशारे पर अपनी बात कहती है, और यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कविता लिख रहा है, बल्कि कविता महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर भावना शुक्ल के संचालन में आयोजित इस समारोह के उपरांत काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन कवि श्री विनोद पाराशर ने किया। समारोह में अकादमी की पदाधिकारी सुश्री सुरेखा शर्मा, सुषमा भंडारी, प्रकाश कंवर, विजय शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, ध्रुव शिवहरे, द्वारका पांडे, किशोर कुणाल के अतिरिक्त कई वरिष्ठ साहित्यकार और कवि उपस्थित रहे। 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी की तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार जी की पुस्तक संयोगता परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार शशि सहगल, मनोज अबोध, डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर संजीव कुमार संस्थापक अध्यक्ष वामा अकादमी, संतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार, शाकुंतला मित्तल वरिष्ठ साहित्यकार निदेशक वामा अकादमी सहित अन्य गणमान्य साहित्यकार उपस्थित रहे।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश वत्स। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्र

0: नमस्कार, मैं काजल सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने चिकित्सा सेवा को केवल पेशा ही नहीं बल्कि मानवता की साधना बना दिया। अपने समर्पण, सादगी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में जाना माना नाम है। सर्जरी में हासिल की गई उपलब्धियों को देखते हुए उनका नाम लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं सामाजिक उपलब्धियों के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। पद्मश्री से सम्मानित है। वर्ष 2005 में हड्डी का सबसे बड़ा ट्यूमर निकालने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की उत्तराखंड शाखा के वो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। आजकल एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब की पहचान केवल एक कुशल सर्जन के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील और विनम्र इंसान के रूप में भी है। आज हम उनसे उनकी शख्सियत, जीवन मूल्यों और प्रेरणादायक अनुभवों पर विशेष बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, आपकी सादगी की चर्चा अक्सर होती है, आप अपने व्यक्तित्व को किस तरह से परिभाषित करेंगे? आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसे आप अपनी सफलता का आधार मानते हैं, क्या कहेंगे?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया काजल जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और आपने जो सवाल किया वो इतना है, वो हमारे लिए नहीं, आपने कहा कि हमारी सफलता का, एक मंत्र दे रहा हूं, वो हमारी सफलता का नहीं, वो आपकी सफलता का और जो लोग सुन रहे हैं वो सबकी सफलता का है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: सबसे अच्छे सफलता के लिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा।
0: क्या बात।
1: उसके बाद हम जिस काम में भी करें, जिस क्षेत्र में भी है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और यदि आपके पास ज्ञान आ गया है तो व्यवहार के माध्यम से इसको आप अपना प्रयोग कीजिए, जिसको स्किल कहते हैं
0: जी।
1: तो हम सब लोगों को इन तीन चीजों को हमेशा रखना चाहिए, व्यवहार, ज्ञान एंड कौशल। उसको हम अंग्रेजी में कहें तो बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब। आप एक संवेदनशील इंसान तो हैं ही, इतनी खूबसूरत बात कही। और जितना मैंने आपके बारे में जाना है, तो मैंने ये भी अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ, जाने माने सर्जन होने के साथ साथ, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए और हमारे श्रोताओं को जरूर आपसे कुछ सुनाइए।
1: देखिए, कविताओं का तो मुझे ऐसे है कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, वो बचपन से रहा है, किताबें खरीदने का और किताबें पढ़ने का। मैं तो आपके माध्यम से सब लोगों से कहूंगा कि जो पुस्तकें हैं वो सबसे अच्छी दोस्त हैं।
0: वाह।
1: मैं लिखता भी रहता हूँ, मेरी एक पुस्तक आई है उपहार संदेश का, जिसको पहले ज्ञानपीठ ने छापा हुआ था, प्रकाशित किया था, अब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। उसमें हमने कई कविताएं लिखी हैं, और कविताएं किसी एक डॉक्टर के नाते नहीं लिखी है, एक समाज के व्यक्ति के नाते मैंने हर समस्या के लिए कहे या हर घटना के ऊपर कोई ना कोई कविता लिखी है। जो दर्शक या जो श्रोता कभी इसको पढ़ेंगे तो मैं ये बिल्कुल उनसे निश्चित तौर से कहता हूं कि उन कविताओं में कम से कम आपको एक कविता ऐसे लगेगी जैसे आपने खुद वो कविता अपने बारे में लिखी हो।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। और डॉक्टर साहब, कविता तो मैं आपसे जरूर सुनेंगे हमारे श्रोता। तो एक सवाल मेरे जहन में आया, कहते हैं कि जो आपकी बॉन्डिंग है, आत्मीयता है जो मरीजों के साथ, वो आपकी पहचान है, तो इसके पीछे आपका जीवन दर्शन क्या है?
1: देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग समाज की उत्पत्ति है।
0: बिल्कुल।
1: और हमें समाज को कुछ देना चाहिए, ये हमारा अब कर्तव्य भी नहीं रहना चाहिए। जो हमारी उम्र के हैं उनका कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए, उनका दायित्व भी होना चाहिए। जैसे बहुत लोग हैं हमारी उम्र के लोग, अपने बच्चों को, नाती पोते पोतियों को तो आप पढ़ाते हो, उनके बारे में तो सोचते हो, कभी आप दूसरों के नाती पोतों के बारे में सोचिए। और हम लोगों को इतना ज्ञान है, यदि हम अपनों को दे सकते हैं तो वो ज्ञान आप दूसरों को दे दिए, और हो सकता है वही दूसरे आपके अपने बन जाएंगे।
0: क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अपना अपनी चीजें बांट के,
1: क्यों नहीं। और वैसे भी कहते हैं कोई भी चीज है ना, बांटने से दुगनी होती है।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी कि एक सर्जन होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान बने रहना, ये बैलेंस आप कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि लेखन के लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती है।
1: आपको मैं दो चीजें कहूं कि संवेदनशीलता हर व्यवसाय में आनी चाहिए, हर प्रोफेशन में आनी चाहिए, लेकिन दो प्रोफेशन एक ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ही जरूरी है, यदि इसको कहें तो बहुत। एक है शिक्षक का
0: जी,
1: और दूसरा है वो है चिकित्सा का
0: जी। कहते हैं ना कि ये जरूर सोचे कि हर आंख का आंसू हमारा है, इंसानियत के शहर की कोई सीमा नहीं होती, हर जख्म की पीड़ा हमारी है, तभी हम दूसरों के दर्द को
1: समझ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, तो एक कविता तो जरूर बनती है।
1: मैं आपको जरूर सुनाऊंगा
0: जी।
1: कविता का शीर्षक है सपने हमारे और आपके, ये हमारी कविता की एक पुस्तक है उपहार संदेश का, उसमें से एक कविता ली गई है। वही यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते।
0: वाह।
1: मैं कहता हूँ कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते।
0: क्या बात।
1: सपनों को देखना सीखो रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं दिन के अधिकांशता। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वासुदेव कुटुंबकम।
0: वाह क्या बात।
1: इसका मतलब है पूरी एक दुनिया।
0: वाह
1: धन्यवाद।
0: बहुत खूबसूरत।
1: धन्यवाद। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं, यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के, इन सपनों की नींव पर तो आज इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो पालो पोसो बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से, सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग।
0: बहुत खूबसूरत।
1: धन्यवाद।
0: बहुत खूब।
1: क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को समाने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को समझने के लिए हमारी शुभकामनाएं।
0: बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तो अभी जैसे आपने कहा कि सहयोग की, अभी आपने बात की थी, खूबसूरत कविता जो आपने हमें सुनाई, हमारे श्रोताओं ने सुनी, तो यहाँ मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि आप जब एक टीम को हेड करते हैं, जब आप टीम के साथ काम करते हैं, तो आपकी जो नेतृत्व शैली होती है वो कैसी रहती है।
1: मैं ये अपनी ही बात नहीं कहता हूँ, मैं बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत मंचों से विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, किसी तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को एक टीम की जरूरत है।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, और यदि अकेले हो सकता तो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि एक टीम के साथ होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्किंग टुगेदर मींस विनिंग टुगेदर। मैं कई लोग जो सुन रहे हैं, और जो खास तौर से उन लोगों को जैसे लेते हैं या अपने सहयोगियों को रखते हैं, तो मैं उन सहयोगियों के लिए पांच चीजों को बताऊंगा। वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी का सबसे भय कि उस जिस व्यक्ति को आप टीम में रख रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंस होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: पहला उसका गुण है कॉम्पिटेंस होना
0: बिल्कुल।
1: चाहिए। दूसरा उसका गुण है कमिटमेंट होना चाहिए
0: जी।
1: तीसरा उसका गुण जो है वो एक कर्टियस होना चाहिए
0: जी।
1: और चौथा उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए।
0: बहुत जरूरी।
1: और पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है उसमें कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए।
0: वाह।
1: तो ये सब चीजें, पांच चीजें होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी टीम को बना सकते। हम लोग किसी के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से काम ना करें। जब हम किसी टीम में होते हैं, किसी दफ्तर में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो हम लोगों को कंपटीशन नहीं, बल्कि हम लोगों को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करने चाहिए, कि जो आप में कमी है वो मैं पूरा करूंगा, जो मुझ में कमी है वो आपको पूरा करना चाहिए।
0: बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आपको इतना बड़ा सम्मान मिला पद्मश्री, तो उसके मिलने के बाद आपके भीतर क्या भावनात्मक परिवर्तन आया?
1: देखिए मैं ये कहूँ कि बिल्कुल आया है, हमें जो कहने के जो प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गए हैं, पहले जैसे हम कहते तो उसको मानते नहीं थे, आज हम जो बातें आज मैं आपके माध्यम से जो श्रोता सुन रहे होंगे वो लोग भी उनमें से मुझे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कुछ लोग हमारी कही हुई बातों को
0: मानते हैं।
1: तो जब किसी भी काम के लिए कहते हैं कोई मार्क लग जाता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है
0: और जिम्मेदारियां और बढ़ जाती
1: है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
0: जी सर, डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जिसने आपको भीतर तक बदल दिया।
1: कई देखिए, सबसे ज्यादा तो जो मुझ में बदलाव आया है कि मैं डॉक्टर बनने के नाते कई तरह के लोग आते हैं
0: जी।
1: कई तरह के लोग आते हैं और मैंने एक ये भी कहा कि हर किसी में भी हर व्यक्ति का विकास वातावरण से होता है और मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। तो मैंने बहुत बदलाव आया, खासतौर से जैसे मरीज लोगों को देखते हैं। मैं एक सड़क सुरक्षा का या रोड सेफ्टी का मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। अभी हमने एक पुस्तक भी लिखी है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं
0: जी, आपने लिखी है?
1: मैंने लिखी
0: जी, बिल्कुल।
1: आज मैं अपने उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट करके भी आया हूं
0: जी,
1: और वो सिर्फ इसीलिए लिखी है कि मैंने बहुत नजदीकी से इन लोगों की जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक इस तरह की इनकी परेशानियों को देखा है। तो उसी के लिए मैं कहता हूं कि लोगों को सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा वो नहीं है। आपको यातायात के नियमों को सीखना चाहिए और मानना चाहिए, और सरकारों को यातायात के नियमों को सिखाना चाहिए और मनवाना चाहिए।
0: अंत में आप श्रोताओं के लिए अपने जीवन मूल्यों से जुड़ा कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सब लोगों से ये कहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए जो मैंने पहले बताया है, आप हर किसी में अपने व्यवहार में सुधार लाएं।
0: बिल्कुल।
1: एक दूसरा में ये कि जब आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप विद्यार्थियों से कहेंगे कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जब आपको विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी जीवन वाले काम करिए, आप वो काम ना करिए जो ग्रस्त वाले लोग काम करते हैं। इस बात को बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए।
0: सर बहुत खूबसूरत बात कही आपने और बहुत आपसे के साथ जो चर्चा रही बहुत ही सार्थक रही, लेकिन इतनी खूबसूरत कविता आपने हमको सुनाई तो अब जी चाह रहा है कि हमारे श्रोताओं को हम एक आपकी एक कविता और सुनाए, तो आपसे गुजारिश की एक और कविता।
1: मैं जरूर सुनाऊंगा। देखिए कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो।
0: क्या बात।
1: कविता हमारी एक नई पुस्तक आने वाली, उसका एक हिस्सा है
0: जी जी।
1: इसको ध्यान दीजिए, एक हमने समाज के एक वर्ग के लिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग बड़ी बात को सुनते रहते हैं, हर बात को सुनते हैं। आपको हर बात को सुनने की जरूरत नहीं है, कहाँ आपको मुखर होना। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सर से सबसे लड़िए झगड़िए, ऐसा भी नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती तो आप अपने मन की तो बात बताइए। खास तौर से जो आज समाज में दुर्घटनाएं घटनाएं हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। कविता का शीर्षक है मौन नहीं मुखर हो। मौन भी एक भाषा है। यह एक कविता का शीर्षक है। हाँ, मौन भी एक भाषा है जो कभी भाव की स्वीकृत है तो कभी भाव की अस्वीकृत की स्थिति में हमेशा मौन नहीं बेबाक होना जरूरी है। ऐसे में ढुलमुल नहीं मुखर होना जरूरी है।
0: क्या बात, वाह,
1: धन्यवाद। मुखरता की जरूरत है। मुखरता संचार का माध्यम है, संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुखरता केवल ज्ञान ही नहीं, एक कौशल है जिसको सीखा सिखाया बेहतर बनाया जा सकता है।
0: वाह।
1: पर मुखरता है क्या? सम्मान के साथ, प्रभावी ढंग से, बिना आक्रामक हुए, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता से, स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना की क्षमता मुखरता की परिभाषा है।
0: वाह।
1: हाँ, मौन भी एक भाषा है, पर जीवन के द्वंद्व में यदि अन्याय या अमंगल की आशंका है तो ऐसे में मौन नहीं मुखरता की आवश्यकता है। इसलिए डर नहीं निडर हो, मौन नहीं मुखर हो।
0: वाह, बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब आपने। अपने अनुभवों और विचारों को आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने भी मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी सादगी, सेवा भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण निश्चित ही हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेंगे। आपने बिल्कुल ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि मानवता के प्रति समर्पण में होती है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हम आज के इस विशेष कार्यक्रम को, हमारे अतिथि को यही विराम देते हैं। हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे आज के अतिथि रहे जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन पद्मश्री डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जी। और इसी के साथ काजल को दीजिए इजाजत, भेंट करता और प्रस्तुति रही काजल सूरी की, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र का कार्यक्रम, और फिर से स्वागत है हमारे केंद्र के कार्यक्रमों में। और अब आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत मिस्टर इंडिया फिल्म की इस गीत से। आवाजें हैं किशोर कुमार और अलीशा जिंग।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

0: हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म का एक गीत शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

और अब मुझे यह कहना है कि हमारे कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, तो अगले बार हम फिर पुनः आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद 10:10 पर मुंबई केंद्र से हम जुड़ेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए। आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं समाचारों के लिए।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सेंडू से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। मोल्दोवा में ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इसके बाद राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया के लिए रवाना होंगी। ये भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जांजिबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिनवेई भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए विकल्पों पर बातचीत करेंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेंगे। मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और एस्टोनिया के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। एस्टोनिया उन्होंने दोनों देशों के इस कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव भी हो सकता है। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
0: जी, तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माता जी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जी, जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं, तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ, कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं

0: पुरुष के विपक्ष में नहीं, नहीं हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: ख्यात की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: जी,
0: है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: वहाँ
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी,
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा एड।

0: बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है ये तो, पूरी साहब करेंगे? पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। उनका काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने उससे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1,000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना? अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हों या ना हों, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है,
1: जी
0: आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं।
1: बिल्कुल
0: तो पूरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती है।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि
0: बिल्कुल
1: वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआती, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद
1: हैं? नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला।
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी, लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनकी
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका,
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं,

0: फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
0: निर्देशक है, कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे हैं, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
0: बहुत अच्छी,
1: बहुत ही संचिता कलाकार है
0: जी। और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
1: जी,
0: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टार्डस्ट कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं। जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं।
1: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इसे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है। आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में। बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड, तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी,
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो
0: जी।
1: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई,
0: है
1: ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है

0: का, ये मैंने उसमें लिया और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
0: जी
1: किताब रही ये,
0: जी
1: यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हमने
0: साहित्य
1: आपको
0: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में लिया।
1: शामिल किया और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: सीरियल का है वो कर रही हूँ। एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी। एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी
1: करनी
0: पड़ती है।
1: पड़ती है।
0: और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
1: अरे
0: तो वो मैं बना रही हूँ। अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूं कि मैं जितना भी काम करूं, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं, बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
0: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है,
1: जी
0: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात। जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे,
1: हाँ, वो तो
0: नहीं।
1: सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
0: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है। करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जैसे एक डॉक्टर बिना एमबीबीएस किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं
0: जी
1: और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद
0: जी
1: को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस
0: जी
1: कार्यक्रम का।
0: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, एलपी का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा,
1: दिल के सिवा
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को
1: नमस्कार।
0: तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी, क्योंकि आज वाकई

बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है, हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: खायो।
1: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो, अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
2: क्या बात है,
1: अब इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश छलके इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है
2: जी,
1: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता है,
2: बिल्कुल रोमांचित हो जाता है, और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना, और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
1: अब यहाँ एक और बात मैं करूँगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं, सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहाँ एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है,
2: कमर जलालाबादी की वो रचना,
1: आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है।
2: हा?
1: आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
2: क्या बात,
1: मतलब ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों।

0: कि एक कलाकार की रेंज क्या है, देखिए आप वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता है वो।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को, 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के। और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी। और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में और प्रभात फिल्म कंपनी से वे जुड़ गए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर 1946 में। तो इस तरह से सुधीर फड़के जी ने एक तरह से संगीत में अपना जो योगदान दिया उसको तो कोई भुला नहीं सकता। आज तक उनके संगीत को लेकर हम सब बहुत रोमांचित होते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण रचना अमर जी उनकी जो रही है, जिसके बारे में किसी भी संगीत मर्मज्ञ से बात कीजिए तो वो जरूर बात करेगा, और वो है गीत रामायण।
0: जी मनीषा जी, मैं आपको ये बता दूं कि गीत रामायण गदी माडगुळकर इनकी जो रचना है, ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में बड़े सम्मानित कवि हैं। इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया और फड़के साहब और गदी माडगुळकर साहब के जो ये जुगलबंदी हुई वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
1: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है
0: जी।
1: और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा
1: जी हाँ
0: है। फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि
1: जी
0: सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति,
1: जी
0: आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक फिल्म
0: एक
1: बनाई
0: फिल्म बनाई।
1: जी
0: और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी है।
1: जी हाँ
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये बताया सुधीर फड़के जी ने।
1: जी हाँ, और इसी महान कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है। श्रोताओं, उनकी आवाज है, और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
2: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है, तो मित्रों मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी उपाध्याय का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूं। गीत गा रहे पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी।

0: ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है।

0: चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: के सरिखे डोले मनवा की ही हिलो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा। तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजे और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी

0: ये पुरस्कार मिले। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
1: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा, रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की, 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
2: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
3: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद

0: अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहाँ भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही।
1: நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எந்திரிச்ச
2: நினைச்ச பணத்தை காணாமல் நினைச்ச
1: ஐயோ சத்தியமா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது
3: என்னமா
2: இந்த அறியாத பாத்தியாடா பணத்தை எண்ணி வச்சிருந்தாண்டா 30 ரூபாய் காணாமடா 30 ரூபாய் காணாம்
1: ஏண்டா அழகப்பா நீ தானே போட்டிக்கோளர்ந்து பணத்தை எடுத்த
3: ஏப்பா விளையாடுறியா நான் காலையில போனா இப்பதான் வர்றேன் मध्यान।
0: 80 के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भाग्यराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

की भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथू, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का यह गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
7: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं कि पूजा जाता है।
8: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।
3: कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी, हाँ हाँ हाँ, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाजें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

जयदेव का स्वर्गदुखिया ये गीत आपने सुना, नीरज का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओं नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे, रोशन की तरह थी।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता।
2: मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष

और ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। परीक्षा एजेंसी ने फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट जमा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थीं, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राज्य के उत्पाद एवं पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा है कि नई उत्पाद नीति राज्य हित और व्यापारी हित में है। इससे राज्य का खजाना भर रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा की जरूरत अभी नहीं है। गिरिडीह परिसदन में कल उन्होंने कहा कि एक्सपायरी बियर बेचने मामले में दोषियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब आने के बाद कार्रवाई होगी।
1: जो उत्पाद नीति हमने बनाया 2025, बेहतर से बेहतर रूप से उस नीति का धरातल पर कार्य दिख रहा है। राजस्व का भी जितना नुकसान हुआ था पूर्व में, जितना टारगेट है वो राजस्व भी अचीव हो रहा है और टारगेट से हम ऊपर जा रहे हैं। तो हमने देखा होगा कि 25-26 में 2700 करोड़ का टारगेट लक्ष्य था सरकार का, 2710 करोड़ हम लोग ले, इस बार 4600 करोड़ का लक्ष्य। हम समझते हैं 5000 करोड़ उसको पूरा करेंगे।
0: इस दौरान मंत्री श्री महतो ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी फाइल लंबित नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि उलीहातू गांव को आदर्श जनजातीय मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वे कल खूंटी में उपायुक्त और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने उलीहातू में समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ बिरसा ओड़ा का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली में आयोजित 72वें फिल्म पुरस्कार समारोह में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में पहली बार संताली भाषा की शॉर्ट फिक्शन फिल्म आंगन के लिए झारखंड के रविराज मुर्मू को बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर का सम्मान मिला है। इस उपलब्धि से न केवल संताली सिनेमा बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 13 मिनट की इस फिल्म में ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय जीवन शैली को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सेंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनटीपीसी और पीयूवीएनएल ने संयुक्त रूप से रांची में द्वितीय ऐश यूजर मीट 2026 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य अपशिष्ट से समृद्ध तक परिवर्तन की सशक्त एवं सतत यात्रा के बारे में लोगों को अवगत कराना था। मौके पर वन पर्यावरण विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने फ्लाई ऐश के सदुपयोग की जानकारी दी।
2: तो हमारे राज्य में एसिडिटी सॉइल का बड़ा इश्यू है, उसमें फ्लाई ऐश मिक्स करके ऑर्गेनिक मैनर के साथ करके इसका पोटेंशियल यूज हो सकता है, ताकि लैंड का रिक्लेमेशन करने का। इसी तरह हमारा जो माइनिंग एरिया में लैंड रिक्लेमेशन के लिए यूज हो सकता है। हमारे राज्य में अभी एक डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, तो सबमें भी ब्रिक्स का यूज हो सकता है।
0: वहीं पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके सहगल ने कहा कि ऐश को अब एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जो सतत अवसंरचना विकास एवं आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। एनएचएआई रांची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सड़क बनाने के कार्यों में किया जा रहा है, इससे मिट्टी की बचत हो रही है।
3: अभी हम लोग फ्लाई ऐश को अपने एम्बेंकमेंट में यूज कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है, तो उसके अप्रोच में जब आरीवाल हम लोग बनाते हैं, आरीवाल के बीच में जो फिलिंग मटेरियल होता है उसके रूप में हम लोग फ्लाई ऐश का यूज कर रहे हैं। और वहाँ पर पहले क्या होता था, मिट्टी से हम लोग भरते थे उसको, और इससे हमारी मिट्टी की बचत हो रही है। तो इस तरह से हम लोग इस वेस्ट मटेरियल का यूज करके पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं।
0: पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सिलारी गांव में कल देर शाम ट्रांसफर का विद्युत फॉल्ट ठीक कर रहे बिजली

0: मिस्त्री सत्येंद्र महतो की हाईटेंशन तार में सटने से मौत हो गई। जूनियर इंजीनियर ने विभागीय प्रावधान के तहत 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। इधर सहायक अभियंता विकास कुमार ने आज जानकारी दी कि शटडाउन लेने के बाद भी बिजली मिस्त्री को करंट कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। नौकरी देने के मामले में जेई से बात कर निर्णय लिया जाएगा। जमशेदपुर में सुशील डे नामक युवक के कथित अपहरण मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
1: जमशेदपुर कोर्ट है, वहाँ के पास से एक व्यक्ति जिसका नाम है सुशील डे, उसे कुछ लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। सभी जो आगे वाले रूट थे या जो भी संभावित रूट थे, उन सबको सक्रिय सचेत किया गया है। और इस चीज में जितने भी लोगों की संलिप्तता थी, उनमें से 2 लोग हमारी गिरफ्त में है और कुछ लोग हैं जिनको अभी कार्रवाई करना है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में 135वें डूरंड कप प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ग्रुप सी के मुकाबले होंगे। पहले दिन 26 जुलाई को जमशेदपुर एफसी और डिफेंडर्स एफसी के बीच मैच होगा। गौरतलब है कि खेल प्रेमियों के लिए यह मैच निशुल्क होगा, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था उत्पन्न न हो इसके लिए दर्शकों को टिकट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे दिखाने पर ही स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक जारी, विपक्षी दलों के नेताओं ने वॉकआउट कर टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाने का जताया विरोध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट जमा करने का दिया निर्देश। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने नई उत्पाद नीति की सराहना की, कहा राज्य और व्यापारियों के हित में है, लक्ष्य से अधिक राजस्व की होगी प्राप्ति। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पहली बार संताली भाषा की फिल्म आंगिन को मिला नेशनल अवार्ड। जमशेदपुर के रविवाज मुर्मू बने देश के बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। और राजधानी रांची में 26 जुलाई से दिखेगा फुटबॉल का रोमांच, खेल प्रेमियों को स्टेडियम में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश, भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए दर्शकों को दिया जाएगा टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी और से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किन की बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का यह गीत था शैलेंद्र का लिखा, एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी, मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं, आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं, इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं, बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में, और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है, तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल यूवर्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है, तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है, आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं, बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है, जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ एक बात है, जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है, हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुरानी यादों की गठरी खुलने वाली है, सच में हमें काफी समय हो गया है, हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने, आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं, और हाँ क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं।

एक श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती, अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहाँ पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समंदर में वापस ले जाती है, जहाँ रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताजा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं ये कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है।

जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना, चेहरों, चेहरे की झुर्रिया और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती, समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन।

Kind, and that is eyes. Without that gift, human life is useless. Beautiful eyes are a part and a particle of human beauty. A lot of beautiful songs and poems are, as well as prose, have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं. कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं. वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं. मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं. तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती हैं. इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहां. जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं. आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं, और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है.

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोताओं, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और

असल आर चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर हैं। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

अभिनेत्री मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है। श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्म है गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती हैं, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती हैं, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज्म का अधूरा शेर हो, इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लाह अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, एक और श्रोता लिखती हैं, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज कैंची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रूम रूम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

बारह तेरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। अखबार बारह बंकवी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं। तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश कलर बोर्ड बहुत खरीद कर दिए। अब वो नहीं है और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र ले गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड वाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है। मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की, काली घटाओं की, रात में चांद की, तारामंडल की, सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, तालाब, झील, पर्वत, देवदार और वृक्ष पक्षी, ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

0: title came at the Syed Modi International in 2024. The Indian shuttler entered the final after opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired with the second set of the match yesterday. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia congratulated PV Sindhu on the historic triumph. In a social media post, Dr. Mandavia said the entire nation is proud of her. Football fever has gripped fans across the globe as defending champions Argentina and European powerhouse Spain prepare for a thrilling showdown in the FIFA World Cup final at the New York, New Jersey Stadium tonight. The title clash is scheduled to kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The two football giants will battle it out for the coveted trophy in a high-voltage clash that promises excitement, drama and unforgettable moments. Both teams have produced impressive performances throughout the tournament and will now battle for football's biggest prize. Last night, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium. In cricket, the series deciding third ODI between India and England will be played today at Lord's in London. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. The series is level 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Mr. Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing, sent assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण

0: विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की तीन दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों

0: अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना होगी। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
5: वो तेरे प्यार का।
4: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
5: मुबारक हो सबको समाए।
4: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
6: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
4: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
7: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
4: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया है। लेख में बताया गया है कि नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिल्प कला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध कराने, सतत आजीविका सृजित करने और भारतीय विरासत को संरक्षित करने में मदद कर रही है। नवीन चिंतन समूह ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी कंपनियों से बातचीत शुरू की है। समूह फ्रांस और अमेरिका की कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। समूह की योजना झारखंड समेत 9 से अधिक राज्यों में करीब 18 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की है, जिस पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने रांची में अपशिष्ट से समृद्धि तक विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सम्मेलन में फ्लाई ऐश और उससे जुड़े उप उत्पादों के नवाचारपूर्ण तथा सतत उपयोग पर नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में धनबाद रेल मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक ADRM मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक रैक लोड हुए हैं।
1: देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश।

0: जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी की रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से जुड़ी प्रणाली के उपचार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इनसे जुड़ी बीमारियों के अत्याधुनिक उपचार पर चर्चा की। नई दिल्ली के न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष तोमर ने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों की जानकारी दी। अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से चिकित्सा ज्ञान के आदान और उन्नत न्यूरो सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि रवि राज मुर्मू के साथ साथ झारखंड और संथाली भाषा के लिए भी गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि फिल्म में संथाली भाषा, संस्कृति और कहानियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सफलता झारखंड के युवा फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को प्रेरित करेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इधर खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दो गांवों के बीच बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया के ध्वस्त होने से दर्जनों गांवों का सोयकों से सीधा संपर्क टूट गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल के 82वें संस्करण में देश भर के 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिलिंग कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: देश के लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कर्मियों के साथ आज संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। 15,000 से अधिक स्थानों पर आज संडे ऑन साइकिलिंग करके देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, फिट रहने का संदेश दिया है और प्रधानमंत्री जी की संडे ऑन साइकिल मूवमेंट के साथ जुड़े हैं।
0: केंद्रीय मंत्री और कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। मंत्री ने विश्वास जताया कि सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम नई सफलताएं हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सलीमा की उपलब्धि देश की बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीले गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाहा जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहेगी।

फिल्म आंधी का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा दीपक गौतम बिट्टू बिट्टी अरिहंत सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकरलाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहां बैठ जाइए ना।
2: बैठकर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूं।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ। सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहां, जहां धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की मां मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
3: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
1: पिताजी?
2: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: आराम से बैठिए ना।
2: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
2: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
2: क्यों
1: नहीं पूछना चाहिए क्या?
2: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
1: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
2: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
1: क्या कह रहे हैं आप?
2: सच ही तो कह रहा हूं भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, बस चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहते?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा न कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं? जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठक रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो। जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहूँ माँ?
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ, अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूँ माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो?

0: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कह कर गए थे? कैसे गए यहाँ से?
1: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
0: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
1: दूसरा क्या?
0: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
1: तुम सब समझते हो नरेश।
0: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
1: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
0: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
1: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
0: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
1: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
0: गए तो थे।
1: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
0: हुई थी।
1: तुमने क्या कहा था?
0: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
1: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
0: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
1: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
0: उन्होंने क्या कहा?
1: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
0: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
1: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
0: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
1: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
0: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
1: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
0: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
1: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
0: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाद में भी खरीदी जा सकती थी।
1: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
0: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
1: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
0: समस्या? क्या समस्या है?
1: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
0: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
1: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
0: समस्या तो कठिन है ही।
1: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
0: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
1: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
0: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
1: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
0: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
1: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
0: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
1: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
0: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
1: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
1: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
1: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है। अब क्या होगा?
1: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?

0: अब मैं क्या सोचूं मां?
1: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो मां।
1: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो मां, उसके लिए हम लोग हैं।
1: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो मां, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
1: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं मां? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
1: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
1: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
1: इतने रुपए लगेंगे।
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
1: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
1: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
1: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
1: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
1: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा।
1: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
1: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ सोच ही लिया है।
1: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
1: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
1: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
1: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
1: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।
1: हाँ शादी तो करनी ही है।
0: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
1: उसमें तो बहुत रुपया लगेंगे।
0: हाँ रुपए तो लगेंगे ही।
1: आएंगे कहाँ से?
0: उपाय करना पड़ेगा।
1: क्या उपाय करेंगे आप?
0: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
1: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
0: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
1: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
0: तो दूसरा कौन करेगा?
1: और नरेश?
0: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
1: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
0: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
1: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
0: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
1: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
0: और क्या सोचना पड़ेगा?
1: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
0: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल ना करें? अपनी तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया भैया भैया, क्या हो गया भैया?
0: क्या
2: हो गया?
0: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चक्कर दिखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया।

0: ही ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में छोड़

रास्ता देखोगी तब तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए। मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो। मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुनने है।
1: कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुनने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा नहीं रही। क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: आप मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मरी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? हाँ? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया है। लेख में बताया गया है कि नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिल्प कला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। नवीन जिंदल समूह ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी कंपनियों से बातचीत शुरू की है। समूह की योजना झारखंड समेत 9 से अधिक राज्यों में करीब 18 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने की है, जिस पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाली फिल्म आंगेन के निर्देशक रवि राज मुर्मू को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का सम्मान मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि रवि राज मुर्मू के साथ साथ झारखंड और संथाली भाषा के लिए भी गर्व की बात है। जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी की रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं से जुड़ी प्रणाली के उपचार पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इनसे जुड़ी बीमारियों के अत्याधुनिक उपचार पर चर्चा की। नई दिल्ली में न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष तोमर ने आधुनिक तकनीकी और उपकरणों की जानकारी दी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इधर खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से दो गांवों के बीच बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई। पुलिया के ध्वस्त होने से दर्जनों गांवों का सोएको से सीधा संपर्क टूट गया है। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित झारखंड की सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: सही बात है
6: जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो हाँ। बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
5: जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहती और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
6: तो मजा था कि सजा थी?
5: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
6: सुंदर नाम।
5: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
6: जी जी। हाँ
5: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
6: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
5: करेक्ट,
6: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
5: जी
6: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको,
5: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं, मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी, तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे, और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर, मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती, तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की, और फिर सोचा वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची, फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह, फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की, 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
6: और पुणे आ गई।
5: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे, और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
6: बिल्कुल, रघुनाथ
5: पुरुषोत्तम
6: परांजपे जी। हाँ। एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
5: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
6: क्या बात। हाँ, है तो हाँ। वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
5: ओह डियर, चलो ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
6: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए, वो तो अभिनेत्री भी थी।
5: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता अपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ, लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, हाँ, मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था, वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा, लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए, रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनके वगैरह वगैरह, और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा, लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा, और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
6: जी,
5: है ना?
6: बिल्कुल।
5: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
6: है
5: कि
6: सही।
5: रोल कैसे जीते हैं वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी और वाकई में बहुत ही हट के बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
6: हाँ, कमाई की बात है। हाँ, बड़ी नहीं, शरारती थी,
5: नहीं शरारती
6: थी।
5: नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
6: वाह वाह, बड़ा प्यारा
5: तो,
6: था।
5: हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो मारे नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा। और फिर तुलसी बाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
6: अरे वाह,
5: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए

0: ग्रेजुएशन कॉलेज रोड से होते हुए फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पूना में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, ये तो
0: हाँ
1: इतनी भव्यता के साथ
0: हाँ
1: शादी की गई
0: जी, और
1: मुझे ना।
0: मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ ये भी एक विडंबना
0: हाँ
1: की बात है,
0: लेकिन वो,
1: ये
0: हाँ
1: वाला जिक्र आगे की तरफ
0: ओके
1: करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहां पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं।
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: लगता है उसी जज्बात को वो
0: वाह
1: आगे
0: वाह
1: बढ़ाता
0: क्या
1: है,
0: बात,
1: तो वो गाना
0: सुनाइए
1: सुनते हुए
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ाते
0: जी।
1: हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थीं और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत और दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि
1: हाँ
0: आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे
1: हाँ
0: लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देणे आहे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
0: जी
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन
1: तो
0: शैली का।
1: जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां,
0: हाँ ये बड़ा मजेदार
1: हाँ।
0: है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
0: वाह
1: कहानी, और
0: वाह
1: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था,
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: बिल्कुल।
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई,
0: जी जी
1: राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
0: शायर हुए।
1: गाने
0: जी
1: वाले, हाँ।
0: जी
1: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी, हाँ, और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो
0: जी
1: सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा
0: खींची
1: रही
0: चली
1: है
0: आती है।
1: और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना, तो
0: हाँ
1: उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा
0: जी
1: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
0: वाह
1: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
0: वाह,
1: ऐसा मुझे लगता है, पता
0: गजब
1: नहीं।
0: गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
1: जी
0: हैं, वो
1: देखो वो
0: फिल्म
1: साथ साथ होता रहा
0: कह
1: है
0: के
1: ना।
0: सुनाते हैं,
1: हाँ
0: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
1: हाँ
0: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
1: जी
0: बनाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: लेकिन दो बातें जो हैं वो
1: हाँ
0: मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं
1: हाँ
0: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये
1: हाँ
0: कहा जा सकता है क्योंकि माँ
1: जी
0: भी
1: हाँ
0: मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
1: हाँ
0: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है क्यों, और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है।
1: वो इत्तेफाक की बात है।
0: जी
1: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांठ पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
0: वाह
1: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
0: जी
1: ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन, मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकिंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। हाँ,
0: ओहो
1: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
0: जी
1: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
0: वाह
1: स्तोत्र भी, अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
0: वो
1: ब्रह्मणि
0: पूरा
1: ये
0: याद है,
1: बड़े,
0: शिव तांडव स्तोत्र।
1: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान सा गड़गड़ाट और बिजान सा कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया, और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी होते हैं, वो ही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, मैंने कहा ऐसे आई, देखने क्या होता है वगैरह। ओहो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
0: जी।
1: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया, जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए, और मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
0: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
1: नहीं नहीं, ऐसा कहते, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स, गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
0: अच्छा, अच्छा,
1: दिन का जो भी छोटा मोटा, जो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
0: 3 गुना बढ़ गई,
1: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
0: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
1: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
0: जी।
1: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को, और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुल करके घर का फोन दे सकती हैं?
0: वाह वाह वाह।
1: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना?
0: मैं
1: सर हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
0: बेचारी
1: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माय टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
0: आवाज से। वाह,
1: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा, वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना कि ताई ताई बोलते हैं, यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
0: लेकिन
1: नहीं,
0: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, गदी माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
1: अच्छा,
0: दो आंखें बारह हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गरिमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षान से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर, एक पहा किती तरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आकर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षान से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाशा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह।
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान, चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा, फला आदम का ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
0: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
1: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
0: सचमुच वो एक लड़की दिखी,
1: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
0: पत्ते
1: हाँ,
0: से फैसला करते हैं कि
1: अच्छा,
0: जिसके पास रानी आएगी
1: अच्छा,
0: वो जाएगा।
1: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं, और वो दो बुष्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
0: बिल्कुल बारी बारी से, और फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बुजुर्ग का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बुजुर्ग का गाना लेके आते हैं, हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
1: कौन सा गाना सुनाओगे
0: आपकी पसंद।
1: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
0: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते हैं।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे। और

0: वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
1: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है
0: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना,
1: जी।
0: इसलिए तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया। लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
1: जी, तो वो
0: हाँ
1: अखबार में विज्ञापन देखा
0: हाँ
1: आपने।
0: तो वो देखा। मैंने तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
1: अच्छा, ऐसे ही कह
0: सकता है।
1: दिया।
0: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। एक महीने में शादी आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होंगी।
1: जी
0: एनीवे तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा NSD में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब 7 जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन।
1: आषाढ़ का एक दिन का
0: हाँ
1: मंचन
0: हाँ
1: किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी जी
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया।
1: पत्नी जो होती है
0: हाँ, कालिदास की पत्नी,
1: जी।
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जा रही थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास
1: ओ
0: में थे,
1: जी।
0: और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
1: जी
0: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को ऐसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ,
1: वाह।
0: और ओह रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है,
1: वाह
0: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया

0: 3 महीने के अंदर फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दनी में। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलका जी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब
1: जी
0: टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया, दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की वी पूरी बदल दी अलका जी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड।
1: हैं।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी याद।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के उपायुक्त को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर कला संकाय की टॉपर छोटी कुमारी की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कसमार के खैरा चातर गांव की रहने वाली इस छात्रा को पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। इधर यह मामला सामने आने के बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो ने आज इस छात्रा को पूरे एक वर्ष की हॉस्टल फीस के रूप में 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू से पूछताछ के बाद पुलिस ने जंगल से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 90 जिंदा कारतूस, 1 नक्सली पाउच बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान नक्सली ने हथियारों के गुप्त ठिकाने की सटीक जानकारी दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया और हथियार बरामद किए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित बेलायडी शीतला मंदिर के समीप एक व्यक्ति की हत्या के विरोध में आज स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र का घेराव कर प्रदर्शन किया। भारतीय सब जूनियर पुरुष और महिला टीमें कल मस्कट में आयोजित होने वाली पहली FIH यूथ हॉकी 5A एशियाई चैंपियनशिप में अपना अभियान शुरू करेंगी। यह 6 दिवसीय यह प्रतियोगिता पहले FIH अंडर 18 यूथ हॉकी 5A विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर होगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, सावन का मौसम जहां प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है जहां साथ था, बातें थी और ढेर सारी मुस्कानें थी।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सावन के इस रिमझिम में एक उम्मीद भी छुपी होती है, शायद कोई खबर आए, शायद कोई आवाज सुनाई दे, या शायद अचानक कोई याद ही दिल को सुकून दे जाए। इंतजार कभी आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

बाहर सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता रहता है।

0: यादों में ही ठहर जाने वाले हैं, जब जब बादल गहराएंगे दिल के खालीपन को छू जाएंगे, कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की, बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की बूंदें यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें यूं ही महकती रहें, और दिलों में बसी उम्मीदें हमेशा रोशन रहे।
1: हाँ।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में आने की 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। छह बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल

लोकगीतों का कार्यक्रम महुआ आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8:00। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, न्यूज़ 9:00, रात्रि 9:00, उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9 बजे के 30 मिनट पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे।

ये वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या। दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गानों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की हमारे चर्चा का पहला विषय है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के बारे में। दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश के 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में वर्ष 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस ऐतिहासिक निर्णय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से न केवल बड़े उद्योगपति तक सीमित रहकर किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों तक पहुंचाना था। दोस्तों, राष्ट्रीयकरण से पहले बैंक मुख्य रूप से लाभ कमाने पर ध्यान देते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुँच बहुत कम थी। गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए बैंक से ऋण लेना आसान नहीं था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। गांव-गांव में बैंक शाखाएं खुली और लाखों लोगों को पहली बार बैंकिंग सुविधाएं भी प्राप्त हुई। दोस्तों, इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि कृषि, शिक्षा, छोटे उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला। किसानों को खेती के लिए ऋण मिलने लगा, छात्रों को शिक्षा ऋण मिलने लगा और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। इससे देश के आर्थिक विकास में नई उनको गति मिल गई। दोस्तों, आज के समय में बैंक केवल पैसे जमा करने और निकालने का माध्यम नहीं, डिजिटल बैंकिंग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने लोगों का जीवन और भी आसान बना दिया है। सरकार की अनेक योजनाएं जैसे कि छात्रवृत्ति, पेंशन, गैस सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे लोगों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। युवाओं के लिए बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस का विशेष महत्व है, इसके बारे में भी बातें करते हैं। आज का युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। बैंक उन्हें शिक्षा ऋण, व्यवसाय ऋण और विभिन्न वित्तीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए युवाओं को बैंकिंग प्रणाली की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। साथ ही हमें बैंकिंग से जुड़ी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ अपना ATM पिन, OTP पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना आवश्यक है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बैंक राष्ट्रीयकरण केवल एक ऐतिहासिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। दोस्तों, इससे करोड़ों लोगों को आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ने और समावेशी विकास का मार्गदर्शन भी किया गया। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस के बारे में। दोस्तों, चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनाते हैं आपको वार्ता। विषय है सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी कार्यक्रम। वार्ताकार हैं सुप्रिया पांडे।
1: सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल। सीखो और कमाओ योजना भारत सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि नई पीढ़ी परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। यह योजना 23 सितंबर 2013 को अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। रोजगार एक प्रशिक्षण महानिदेशालय

कि रिपोर्टों के अनुसार भारत के अधिकांश श्रम बल में विपणन योग्य कौशल नहीं है जो समुचित रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बाधा है। हालांकि भारत में युवाओं की जनसंख्या काफी अधिक है, लेकिन 10% भारत

मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं, जबकि 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले कुछ ही बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं। इससे पता चलता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले की एक बड़ी संख्या एक और अपनी रोजगार परकता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुंच नहीं रखती है। वहीं 12.8 मिलियन नौकरियां उपलब्ध होती हैं। 2011 के आकलनों के अनुसार भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है। सचेतर समिति की सिफारिशों के अनुसार देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। मुस्लिम समुदाय का विशाल तबका स्वरोजगार के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। इसके अलावा एक उल्लेखनीय अनुपात विशेषकर महिलाएं वास्तव में गृह आधारित कार्य में लगी हुई हैं, जबकि इनमें से कुछ कार्मिक उन क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिनमें विकास हुआ है। वही बहुत लोग उन व्यवसायों में लगे हुए हैं जिनका विकास स्थिर है। विकासोन्मुख क्षेत्रों में कामगारों की मदद करने के लिए एक नीति की जरूरत है, ताकि वे उस क्षेत्र में कार्य कर रही बाजारोन्मुख फर्मों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सके। इसके लिए भारत को अपने कार्मिकों को ज्ञानी कार्मिक बनाने की जरूरत है जो बहु कौशल प्राप्त हों। इसके लिए अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के संबंध में कर्म समूह की सिफारिशों के मद्देनज़र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का वित्त वर्ष 2013-14 से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु एक नई 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना सीखो और कमाओ क्रियान्वित किया गया योजना है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बेरोजगारी दर को कम करना, अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण करना एवं उनका उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना, मौजूदा कार्मिकों को रोजगार परकता के लिए बेहतर तथा उनका प्लेसमेंट सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना, हाशिया पर रह रहे अल्पसंख्यक के लिए आजीविका का बेहतर साधन पैदा करना तथा उन्हें मुख्य धारा में लाना, देश के लिए सशक्त मानव संसाधन तैयार करना। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक परंपरागत व्यवसायों के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उनकी शैक्षणिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक सम्मान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन करना होगा, जिससे उन्हें एक उपयुक्त रोजगार मिल सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशलों हेतु विकास कार्यक्रम की शुरुआत करता है। NCBT द्वारा अनुमोदित इस पाठ्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशलों जैसे कढ़ाई, चिकनकारी, गरदोजी, पैचवर्क, रत्न एवं आभूषण, काष्ट कार्य, चमड़े की वस्तुएं, कांस्य धातु कार्य, कांच के बर्तन, कालीन आदि शामिल हैं। इनके अलावा विशिष्ट कर राज्य अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन PIA के माध्यम से किया जाता है। कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो कम से कम 3 वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबंध हो तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार का कोई भी संस्थान, पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्थान भी इसे क्रियान्वित कर सकती है। वैसा NGO जो विशेषकर अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण में संचालन एवं संवर्धन में लगी हो। पात्रता: प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की आयु 14 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इनकी न्यूनतम शिक्षा कम से कम 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए। इस योजना के अधीन विहित अनुसार आरक्षित श्रेणियों के रिक्त रहने की स्थिति में ये रिक्त सीटें अनारक्षित समझी जाएंगी। यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अधिसूचित 5 अल्पसंख्यक समुदायों तथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी के लाभ के लिए क्रियान्वित की गई है। इस कार्यक्रम में 33% सीटें बालिकाओं, महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। इस योजना के 2 संघटक हैं। पहला, आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण, और दूसरा,
पारंपरिक व्यापार, शिल्पों, कला, व्यवसाय

0: व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण, आधुनिक ट्रेडों के लिए 3 माह का प्रशिक्षण होगा। इस कार्यक्रम में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, बेसिक आईटी पी प्रशिक्षण तथा बेसिक अंग्रेजी प्रशिक्षण शामिल हैं। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु यह है कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत किस्म का रोजगार मिले। प्रशिक्षुकों को आधार, यूआईडी संस्था अथवा अल्प किसी सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान से जोड़ना होगा। इस प्रशिक्षण में बाहरी प्रशिक्षणार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदाय के निरक्तों के लिए 2.5% आरक्षण की सुविधा है। वित्त पोषण का स्वरूप, यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा पैनल में शामिल किए गए पात्र संगठनों के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं की संपूर्ण लागत का वहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। परियोजना लागत का 5% प्रोत्साहन राशि उन PIE को देय होगी जो परियोजना को सफलतापूर्वक ससमय पूरा करते हों तथा प्लेसमेंट सहित सारी शर्तों को पूरा करते हैं। प्लेसमेंट से जुड़े संबंधित कौशल प्रशिक्षणार्थी जो बाह्य स्थान से आते हैं उन्हें 3 महीनों के लिए योजना आवास पर 1500 प्रति लाभुक तथा 750 वजीफा देने का प्रावधान है। गैर आवासियों के लिए स्थानीय 1500 वजीफा का प्रावधान है। पारंपरिक ट्रेडों के लिए गैर आवासीय 10,000 रुपये प्रतिमाह एवं आवासियों के लिए 13,000 रुपये प्रतिमाह लागत दी जाती है। परियोजना अनुमोदन पर विधियां 3 किस्तों में विमुक्त की जाती हैं, जिसका अनुपात 40:40:20 प्लस प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संगठन संस्थान को परियोजना में शामिल करने हेतु सरकारी वेबसाइट के माध्यम से पैनल हेतु विज्ञापन जारी करती है। विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दाता समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस समिति में मंत्रालय से संबंधित समुचित योजना आयोग का प्रतिनिधि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार का प्रतिनिधि, मंत्रालय के निदेशन एवं योजना से संबंधित निदेशक होते हैं। प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात सहायता, चूँकि इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सार्थक रोजगार प्रदान करना है।
1: दोस्तों, वह अभी आप सुन रहे थे वार्ता विषय था सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी कार्यक्रम। वार्ताकार थे सुप्रिया पांडे। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा यह प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव इतिहास को उस ऐतिहासिक उपलब्धि याद कराना है जब 20 जुलाई 1969 को मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अमेरिका में अंतरिक्ष यात्री नील एंस्टर्ट ने सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे, जबकि बस एल्ट्रेन ने उनके साथ दिए। इस ऐतिहासिक मिशन का नाम अपोलो 11 था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के प्रति लोगों का, विशेषकर युवाओं में रुचि बढ़ाना, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना तथा अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। दोस्तों, चंद्रमा केवल पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चंद्रमा के अध्ययन से हमें पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल के विकास और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। आज की दुनिया में कई देश चंद्रमा पर नए मिशन भेज रहे हैं और वहां भविष्य के मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं पर शोध भी कर रहे हैं। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित चंद्रयान मिशन ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। विशेष रूप से चंद्रयान 3 की सफल स्पॉट लैंडिंग से यह सिद्ध कर दिया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। इस सफलता ने देश के युवाओं में विज्ञान और तत्कालीन के प्रति नया उत्साह पैदा किया। प्रिय साथियों, आज के युवा के लिए दिवस विशेष प्रेरणा का स्रोत है। हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम, वैज्ञानिक सोच हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हमें मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ करने के बजाय विज्ञान, तकनीक, गणित और नवाचार की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। आने वाला समय अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों का है, इसलिए हमें स्वयं को इन क्षेत्रों के लिए तैयार करना आवश्यक है।

दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस पर यही सभी हमें संकल्प लेना चाहिए कि प्रति इनके प्रति जिज्ञासा बनी रहेगी। विज्ञान को अपने जीवन में जिज्ञासा से बनाए रखेंगे, नई खोजों को सीखेंगे और अपने ज्ञान एवं कौशल से भारत के विज्ञान अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाने में अपना योगदान देने की पूरी कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के बारे में। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें आपकी दोस्त आराध्या को। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के उपायुक्त को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर कला संकाय की टॉपर छोटी कुमारी की पढ़ाई

0: के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। कसमार के खैरा चातर गांव की रहने वाली इस छात्रा को पढ़ाई के लिए आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरायकेला मंडल कारा का आज संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह, उपायुक्त नीतीश कुमार और पुलिस अधीक्षक मनोज स्वारगिरी समेत अधिकारियों ने रसोई घर बंदी वार्डों, अभिलेखों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी भी दी गयी। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने आज जमशेदपुर पश्चिमी और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदान केंद्रों का दौरा किया। मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 और 20 जुलाई को सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं। इधर राज्य नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण का निरीक्षण किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गढ़वा जिले के भंडरिया बड़गढ़ मुख्य मार्ग स्थित सालो जंगल में आज सुबह अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खूंटी जिले के तोरपा मुख्य मार्ग स्थित दो दुकानों से बीती रात करीब 10 लाख रुपए के आभूषण और नकद की चोरी कर ली गई। घटना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने दुकान में लगे कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी हां श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं कृषक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बाड़ी।

किसान विजय महतो से लेकर भेंटवार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि सोयाबीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है करीबन 50% तक पाई जाती है। तो श्रोताओं, सोयाबीन जो कि एक तिलहनी और दलहनी फसल के रूप में भी जाना जाता है, इसे स्वनिर्म फसल भी कहा

और यह आय देने में तो इसकी अग्रणी भूमिका होती ही है, साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी यह काफ़ी सहायक साबित होता है, क्योंकि सोयाबीन की जड़ों में भी राइजोबियम जीवाणु जो हैं वो पाए जाते हैं, और वो जीवाणु जो हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं और इससे कारण मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ बनती है। और देखा जा सकता हो तो भारत के कई प्रदेशों में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा रही है। सोयाबीन

उन्नत फसल के रूप में जानी जाती है और इसके लिए प्रायः 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना जरूरी है। हालांकि इसके लिए वर्षा की जो मात्रा है वो 600 से 1000 मिलीमीटर वर्षा जो है काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी या फिर मध्यम काली मिट्टी जो है इसके लिए काफ़ी सर्वोत्तम होती है और मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 7.5 के बीच का होना लाजमी है। और सोयाबीन की यदि हम उन्नत किस्मों की बात करें श्रोताओं, तो JS 335, JS 2029, NRC 37, PS 1347 और बिरसा सोया जो कि हमारे प्रदेश झारखंड के मानसून या मौसम के हिसाब से देखा जाए तो बिरसा सोया एक काफ़ी उन्नत किस्म मानी जाती है सोयाबीन की खेती के लिए। श्रोताओं, सोयाबीन की खेती के लिए प्राय उसी तरीके को अपनाना है जिसमें कि खेत को 2 से 3 बार जुताई कर दें और मिट्टी को भुरभुरी बना दें। और जब आप अपने खेत की अंतिम जुताई करते हैं तो अंतिम जुताई के पश्चात उसमें पाटा चला दें जिससे कि खेत जो है वो समतल हो जाए। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि जल की निकासी की उचित व्यवस्था हो, जल का जमा होना फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। सोयाबीन की जो बुआई है श्रोताओं, मानसून की पहली अच्छी वर्षा के बाद आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें देखा जाए तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम या द्वितीय पखवाड़े तक इसकी बुआई की सबसे उपयुक्त समय मानी जाती है। और देर से बुआई करने पर भी उत्पादन प्राप्त होता है श्रोताओं, लेकिन उत्पादन में

उस पर यह निर्भर करता है। हालांकि देखा जाए तो 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो बीज है इसके लिए अनुमानित की गई है। कतार से कतार की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधों की जो दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर रखना उचित मानी जाती है और बुआई की जो गहराई है स्वतः वो भी 3 से 5 सेंटीमीटर अनुमानित की गई है। हालांकि स्वतः यदि आप सीड ड्रिल द्वारा बुआई करते हैं तो प्रायः अंकुरण और पौधे की जो संख्या है वो बेहतर प्राप्त होती है। हालांकि श्रोताओं जिस प्रकार से हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज को बुआई से पूर्व ही बीजों को बीजोपचार करना जरूरी हो जाता है। तो बीजोपचार करने में फफूंदनाशक में कार्बोडिजिम या थीरम से इसे उपचारित करना जरूरी है और इसके पश्चात राइजोबियम एवं PSB कल्चर से भी उपचारित कर लें तो इससे सोयाबीन के जो बीज हैं उनका अंकुरण अच्छा होता है और रोग कम लगते हैं और उत्पादन बढ़ता है। तो श्रोताओं बीज को जब भी लगाएं तो उसे बीजोपचारित जरूर कर लें और उसके पश्चात श्रोताओं जब आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो इसमें जो उर्वरक की बात हम करते हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और मिट्टी के परीक्षण के प्राप्त जाँचों उपरांत जो उसके जो रिपोर्ट आते हैं उसी के आधार पर उर्वरक का उपयोग जो है वो काफ़ी लाभकारी हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम और गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुशंसित की गई है। तो इस तरीके से हम अपने सोयाबीन के फसलों के लिए इस प्रकार से उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। और श्रोताओं यदि मिट्टी में जिंक की कमी हो तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के हिसाब से दें। बेहतर है श्रोताओं कि यदि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से खेत में जुताई के समय ही मिला दें तो काफ़ी लाभ इससे मिल पाता है। हालांकि देखा जाए तो सिंचाई के लिए तो आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि यह मुख्य रूप से मानसून की ही खेती है और वैसी स्थिति में यदि पानी की कमी हो तो जब फूल आने लगे और दाना पड़ने लगे तो 1 से 2 सिंचाई किया जा सकता है। लेकिन सिंचाई करने से पहले भी इस बात का ख्याल रखें कि जल की भराव ना हो सके। और श्रोताओं हर फसल की तरह सोयाबीन की भी फसल में खरपतवार निकलते हैं तो वैसी स्थिति में बुआई से के 20 से 25 तथा 40 से 45 दिन के बाद इसकी निराई गुड़ाई कर दें और आवश्यकता अनुसार ही खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करें और प्रति

खेत को खर पतवार से मुक्त जरूर रखें। इसमें तना मक्खी, गडल बीटर, सेमी लूपर जैसे कीटों का भी प्रकोप होता है, तो उनसे नुकसान से बचाने के लिए कुछ नियंत्रण के उपाय किए जा सकते हैं। श्रोताओं, इसमें है कि श्रोताओं समय पर इसकी बुआई जरूरी है, खेत की हमेशा निगरानी करते रहें। फेरोमोन ट्रैप और पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं, और जो भी कृषि विशेषज्ञ जो है, कृषि वैज्ञानिक जो है, उनसे अनुशंसित कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। श्रोताओं, हालांकि देखा जाए तो इसमें पीला मोजेक रोग, चारकोल रॉट, रस्ट, कॉलर रॉट जैसे रोग लगते हैं श्रोताओं, तो इसे उपचार के लिए उपाय के लिए श्रोताओं रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, फसल चक्र को अपनाएं और प्रमाणित तो रोग मुक्त बीज का ही उपयोग करें, और इसके पश्चात भी यदि आपको रोग दिखाई पड़ते हैं श्रोताओं तो कृषि वैज्ञानिक के सलाह के अनुसार से ही फफूंदनाशी जो दवा है उसका छिड़काव करें। और अब जब बात आती है श्रोताओं की फसल की कटाई की, तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि पौधों की जो पत्तियां जब पीली होकर गिरने लगती हैं और फलियां सूख कर भूरी हो जाती हैं, तब आप अपने इस फसल की कटाई करें, क्योंकि अधिक देर पर रहने पर फलियां जो हैं वो फट जाते हैं और दाने जो हैं वो फिर पुनः बिखर जाते हैं। तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यदि फलियां सूख कर भूरी हो जाए तो अपनी फसल की आप कटाई कर सकते हैं, और कटाई के पश्चात 3 से 4 दिन तक सुखा कर इसकी मड़ाई करें, और दानों की नमी जो है 10 से 12% जब हो जाए तभी इसका भंडारण करें। श्रोताओं, हालांकि देखा गया श्रोताओं कि 20 से 25 क्विंटल और जो भी सिंचित या उन्नत प्रबंध वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये प्रति हेक्टर के हिसाब से इसकी उपज जो है वो प्राप्त होती है, और अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है तो ज़्यादा गुणवत्ता और बेहतर गुणवत्ता वाले आपको फसल की प्राप्ति होती है। उसमें तेल और प्रोटीन की भी मात्रा होती है, साथ ही साथ अगली फसल को भी नाइट्रोजन का लाभ मिल पाता है। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रोताओं, फसल चक्र का अपनाना। जी हाँ श्रोताओं, एक ही फसल को बार बार आप अपने खेतों में

फसल है ये काफ़ी लाभकारी और पोषक तत्वों से तो भरपूर होता ही है, और इन सब बातों के कारण बाजार में इसकी मांग जो है लगातार बनी रहती है और हमारे किसान भाई उन्नत बीज का चयन करते हैं, समय पर इसकी बुआई करते हैं, बीजोपचार करते हैं, संतुलित उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो समुचित यदि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त होता है। और कई हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस तकनीक को अपनाकर अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ हमारे किसान भाई के भी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बेहतर सुधार होता चला जाता है। तो निश्चित रूप से श्रोताओं, सोयाबीन की जो खेती है काफ़ी लाभकारी खेती है, अगर वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो काफ़ी इससे लाभ मिल पाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती पर, और अब आइए हम आपको ले चलते हैं खंडवा पलामू के सफल कृषक विजय महतो से ली गई एक भेंटवार्ता, और इनसे बातचीत कर रहे हैं।

0: भाइयों, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के रजवाडी पंचायत के खनवा गांव के एक सफल किसान विजय महतो, जिनसे आज हम बातें करेंगे कि अभी वर्तमान में वो क्या खेती बाड़ी कर रहे हैं। मोटे अनाजों में मड़ुआ बाजरा वगैरह की खेती ये किस प्रकार कर रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी मड़ुआ की खेती की क्या स्थिति है?
1: मड़ुआ की खेती तो यहाँ से बिया जैसे उखड़ गया था, मगर अभी हम 4 किलो बिया उपजाऊ किए हैं और पूरे किसान को 100-200 ग्राम हम मैंने बांटे हैं, जो सबको लगाइए। सरकार के बहुत ही है जे मड़ुआ के खेती करिए, मकई के खेती करिए।

0: बजरा जिनोर ना,
1: हम्म,
0: तो इस प्रकार के बहुत लोग के हम समझाए हैं, बिया घर घर जाके दिए हैं और हम भी खेती उसको अभी बिचड़ा डाले हैं।
1: अच्छा, मोटे अनाजों में भी आप किस किस चीज की खेती कर रहे हैं?
0: अभी मोटे अनाज में मक्का अभी मड़ुआ लगाने वाला है, रहर तिल और धान, उनके तो बिजड़ा किया है, वो तो खैर पानी की स्थिति खराब है। और मोटा अनाज में
1: मड़ुआ की खेती की अगर बात करें तो
0: मड़ुआ खेती तो अच्छा है, सरकार भी बहुत ध्यान दे रहा है जो मड़ुआ और मकई की खेती करे, जिनोर बजरा, और इसीलिए हम लोग भी चर्चा करके गांव में बैठक वैठक करके बीजा उजा बांटे हैं। जे पुरान चीज तो मोटा अनाज वाला सबे मने उखड़ते जा रहा है यहाँ से, मगर हम लोग अभी हम मेरे मिलकर रांची से मिला है ब्लॉक के माध्यम से मड़ुआ, उस पर हम लोग 10-20 किसान हम लोग तैयारी
1: तो
0: किए हैं
1: ब्लॉक से
0: लगा।
1: मड़ुआ लेने के लिए क्या किए थे?
0: हम लोग के रजिस्ट्रेशन है, जब कोई चीज आता है ब्लॉक में तो हम लोग के यहाँ फोन करके BTM DO जो हैं बुला के दे देते हैं।
1: अच्छा
0: परमानेंट हम लोग 150 वो किसान के रजिस्ट्रेशन है,
1: अच्छा
0: वहीं से आता है माल।
1: अच्छा और तब करते हैं। अच्छा, इसके लिए जैसे हमारे किसान भाई अगर मोटे अनाजों खेती में मड़ुआ की खेती करना चाहें तो क्या करेंगे? सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
0: पहले बिचड़ा के हम लोग खेत तैयार कर देते हैं, उसको हल्का भुरभुरी बना के बिचड़ा छीट के उसको पानी पटा देते हैं। अगर पानी बारिश हो गया तो अपने जनरेशन हो जाएगा, नहीं होगा तो पानी पटा देते हैं। 20 से 25 दिन में बिचड़ा जब हो जाएगा तो मड़ुआ के खेत मैंने इतना तैयारी करना है जो 21 चास करना है उसको,
1: अच्छा,
0: इतना तैयारी करना है। और जब हल्का हल्का बारिश होगा तो धान जैसे एक हो लगा देते हैं हम लोग खेत में।
1: उसमें पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती होगी?
0: पानी की तो बहुत आवश्यकता कम है, बारिश करता है तो पटाने की जरूरतें नहीं है उसका। और 3 नंबर खेत में भी होता है पैदा, जहाँ एकदम कोई मरल भूमि है वहाँ वो आप अच्छा से खेत तैयारी करिएगा तो पैदा 3 नंबर खेत में ही होता है।
1: और लगभग 1 कट्ठा में अगर मड़ुआ लगाया जाए तो कितना उत्पादन कर
0: एक
1: देंगे?
0: कट्ठा में अगर मड़ुआ अच्छा पैदा होगा तो 30 से 40 किलो
1: उत्पादित हो जाएगा।
0: उत्पादन हो जाएगा
1: अच्छा,
0: अच्छा
1: मड़ुआ के
0: वैरायटी।
1: साथ और किसकी खेती कर रहे हैं आप?
0: मड़ुआ के साथ
1: बाजरा की
0: तो
1: अगर बात करें तो
0: बाजरा के भी हम लोग मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं, जे बिया आवे बहुत पानी की स्थिति खराब है तो टनिहाने खेती होइबे करेगा, मोटे अनाज होगा
1: हाँ,
0: तो मार्केट में तो अभी बिया नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी हम लोग जुगाड़ लगाए हैं ब्लॉक के माध्यम से जो बिया मंगाइए हर किसान। अभी जो धान के खेत है उसका में भी मड़ुआ बजरा जिनोर ये सब लगा दीजिए, एकदम कम पानी में भी पैदा अच्छा हो।
1: अच्छा, इस प्रकार से खेती हो रही है।
0: जी
1: और धान की खेती तो अभी नगण्य स्थिति में है
0: धान के
1: क्योंकि
0: खेती
1: बारिश
0: तो
1: हुई नहीं।
0: बारिश नहीं
1: और
0: है,
1: सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों की क्या स्थिति है?
0: सब्जी भी तो लगाए हैं हम एक एकड़ में, नेनुआ है, झींगी है, करेली, बोदी और 6 क्विंटल हम वोल की खेती भी किए हैं,
1: अच्छा,
0: तो मिला जुला के ठीक है, मगर बारिश की स्थिति से उपजाऊ कम हो रहा है, मगर फिर भी अभी हम लोग पानी पटा पटा के जिंदा रखे हैं।
1: ओल की खेती की तैयारी कैसे करते हैं?
0: ओल के खेती 2 तरह के होता है, एक अगर माघ फागुन में लगाते हैं तो पानी ज़्यादा लेता है, और एक बारिश जैसे जून में अगर लगाते हैं तो मैंने वो होता है, मगर उसको भर गर्मी हम लोग खेत के जोतते जोतते एकदम पूरे तैयारी कर लेते हैं। जब तैयारी हो जाता है तो 2.5 बाई 2.5 पर 1.5 फीट के हम लोग गड्ढा बना लेते हैं, गड्ढा बनौला के बाद उसको 8 दिन 10 दिन सूखने देते हैं, उसके बाद अलियार कतवार उसको डाल के आग लगा देते हैं, इसको बाद हम लोग उसको तैयारी करके ओल भी लगाते हैं। तो हम लोग अपना विधिवत जैसे अगर ओल के खेत दरी तैयार हो गया तो एक केमिकल दवा डाल देते हैं दर में, और तीसरे ओल जब फार लेते हैं ये 2 फारा 4 फारा तो ओल को हम लोग कच्चा गोबर में घोल के घोल में बोथ बोथ के लगाते हैं।
1: अच्छा, और अब मड़ुआ का जैसे बीज की हम बात किए थे सर्वप्रथम, तो मड़ुआ के बीज के लिए अभी भी वितरण हो रहा है ब्लॉक वगैरह में?
0: ब्लॉक में आया था बटा गया,
1: अच्छा,
0: और हम भी 4 किलो ले गए तो पूरे गांव में 100-150 ग्राम कहे जो हर किसान लगाइए, 10 से थान लगाइए, बिया उपजाना है तो ये चीज़ अब मिलना ही वाला है। रांची जिला साइल था और ब्लॉक में आया तो ब्लॉक के माध्यम से हम लोग के मिला,

0: को पर्सनल बुला के दिए, मगर हम पूरे गांव में 100 ग्राम 50 ग्राम ये जैसन किसान था हम लोग सबके देके समझाए इस तरह के खेती करना है। और कर ही रहा था लोग, अभी बीच में सब स्टैंडर्ड क्लास के धान के खेती और गेहूं पर चल गया, इसलिए मड़ुआ मकई छोड़ दिया। मगर जो स्थिति बारिश के है, अब मड़ुए मकई के खेती करना ही होगा।
1: और ये बाजरा,
0: बाजरा भी बहुत 3 नंबर खेत में है, कोई मेहनत नहीं है। और वो आदमी के भी खाने में ठीक है, और एक मवेशी के दुधारू जानवर के भी खिलाइएगा तो बहुत अच्छा है, दूध भी उसका बहुत अच्छा, मैंने खाने से
1: चारा के रूप में भी हो जाता है,
0: चारा के रूप में है, वो आदमी के भी अच्छा है।
1: इस प्रकार हमारे किसान भाई अगर जल्दी मड़ुआ वगैरह की खेती करना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
0: हमको यही कहना है कि हर किसान जागरूक होके अगर मड़ुआ मकई बाजरा जिनोर की खेती करे तो कम बारिश में कम पानी में आज जो स्थिति है नहीं मिलेगा, और धान पर किसान भी रहेंगे जो धान होगा और ये होगा तो नहीं होगा। हर खेत में मड़ुआ मक्का और बाजरा जिनोर के खेती करें। और हम भी अभी 5 एकड़ जमीन के जोत बना के रखे हैं, और बारिश नहीं होगा तो हम मक्का की खेती विधिवत लगावेंगे, बारिश हल्का हल्का भी होगा तो मक्का की खेती हो जाएगा। और चावल और मक्का के एक रेट है मार्केट में।
1: हाँ,
0: और मक्का की रोटी भी खाइएगा तो आपका एकदम शुद्ध भोजन है, कोई बीमारी नहीं है।
1: कुल मिलाकर हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाजों की खेती की तरफ वापस आने की जरूरत है, ताकि वो प्रति जो उनकी जो जमीन है खेती योग्य उसको उपयोग कर सके बढ़िया से, क्योंकि अभी पानी की स्थिति ठीक नहीं है। इस स्थिति में हमारे किसान भाई कम सिंचाई वाली फसलों का उत्पादन ले सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े बीजा महतो जी और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसलिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सफल कृषक विजय महतो से ली गई भेंटवार्ता और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए जानते हैं मक्का की अधिक उपज की वैज्ञानिक तकनीक। जी हाँ श्रोताओं, मक्का यदि देखा जाए तो खाद्यान्न फसल के साथ साथ यह चारा फसल के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग मानव भोजन, पशु आहार और कई तरीके से देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि हमारे किसान भाई वैज्ञानिक तकनीक को अपनाते हैं, मक्का की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से कम लागत में ज़्यादा उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तो उन्नत किस्म का चयन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और ज़्यादा उत्पादन के लिए श्रोताओं क्षेत्र और मौसम के अनुसार ही उन्नत संकर यानी कि हाइब्रिड किस्म का चयन करें, प्रमाणित और उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज का ही उपयोग में लाए। मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 का होना भी जरूरी है और खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और जब तक मिट्टी की भुरभुरी न हो जाए और इसे पुनः समतल कर दे। अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिला दे। मक्का की बुआई के समय श्रोताओं सही समय का होना भी लाजमी है। खरीफ मौसम में मॉनसून की पहली अच्छी वर्षा के बाद बुआई करें। समय पर बुआई करने से पौधों का विकास भी अच्छा होता है, कीट और रोगों का प्रकोप भी श्रोताओं कम हो जाता है। बुआई से पहले बीजों को अनुशंसित फफूंदनाशक से उपचारित कर ले। उपचार करने के पश्चात श्रोताओं अंकुरण काफी अच्छा होता है और पौधों को भी प्रारंभिक पोषण जो है वो प्राप्त हो जाता है। श्रोताओं मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इन सभी उर्वरकों का संतुलित मात्रा में दे जिससे कि पौधों का वृद्धि और दानों का विकास हो सके। हालांकि इसमें गंधक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उपयोग किया जाता है लेकिन मिट्टी परीक्षण से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ही श्रोताओं इसको करें। और बात हम करते हैं सिंचाई प्रबंधन की, तो जैसा कि ये मानसून पर आधारित है श्रोताओं, तो अगर फिर भी सिंचाई की जरूरत पड़ जाए तो फूल निकलने या दाना बनने की अवस्था में सिंचाई जरूर करें। खेत में जल भराव ना हो इसको भी सुनिश्चित कर लें क्योंकि जल भराव से जड़ों को नुकसान हो सकता है। और श्रोताओं हर फसल की तरह खरपतवार में भी निकलते हैं पौधों में, तो इसके लिए समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करते रहे। तो और बात हम करते हैं अब इसकी कटाई और भंडारण के श्रोताओं, तो जब भूठे पूरी तरीके से पक जाते हैं दानों की जो नमी है 20 से 25% रह जाए तब इसकी कटाई करें। कटाई के पश्चात भूटों को अच्छे तरीके से सुखाकर दानों की नमी जिसमें कि 12 से 14% हो तब इसे भंडारण करें। कटाई श्रोताओं दानों में नमी जो है वो 20 से 25% तक का रहना है। तो और देखा जा सकता हूँ तो मक्का की अधिक उपज जो है वो हमें उन्नत बीज, समय पर बीज की बुआई, संतुलित उर्वरक, समय पर खरपतवार का नियंत्रण, कीट प्रबंधन अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मक्का की अधिक उपज प्राप्त होती है। और जब अगर उत्पादन अच्छी प्राप्त होती है श्रोताओं तो निश्चित रूप से आय में भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो श्रोताओं ये तो थी बातें मक्का की अधिक उपज के लिए वैज्ञानिक तकनीक। और अब श्रोताओं इसी के साथ खेतीबाड़ी से अब हमें दीजिए इजाज़त।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी, और अब आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम जननी। तो आज के जननी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज के इस जननी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप सुनेंगे महिलाएं अपने बच्चों के पोषण का रखे ख्याल, साथ ही साथ सुनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ, और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे पूनम सहाय से लिखी वार्ता। विषय है जल जंगल और जमीन एक अभिन्न संबंध। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं महिलाएं अपने बच्चों के पोषण का रखे ख्याल। जहाँ श्रोताओं, बच्चों का स्वस्थ शरीर, मानसिक और बौद्धिक विकास उचित पोषण पर ही निर्भर करता है। जीवन के पहले 1000 दिन यानी कि गर्भाधान से लेकर 2 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस अवधि में बच्चे को संतुलित और पौष्टिक आहार का मिलना आवश्यक है, और जब भी मिलते हैं तभी उनका विकास बेहतर होता है, और साथ ही साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कि भविष्य में बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और इसमें देखा जा सकता हूँ तो महिलाएं, विशेषकर माताओं की यह जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दें। श्रोताओं, शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू कर दें। जन्म के बाद निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, वो बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। इससे रोगों से बचने वाले प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं जो नवजात बच्चों को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जन्म से 6 माह तक शिशु को माँ का दूध दे, और इस दौरान पानी, शहद या घुटी या कोई भी खाद्य पदार्थ देने की आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती है। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है, और इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। 6 माह की आयु के पश्चात बच्चों का लिए माँ का ही दूध पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए बच्चों को पूरक आहार भी दे। शुरुआत में इसमें नरम और आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ, जिसमें कि दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया, मसला हुआ केला और दही, या फिर मौसमी फल जो है दे, जिससे कि बच्चा बड़ा हो सके और इसकी भोजन की मात्रा और विविधता भी बढ़ता रहे। बच्चों के भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को भी शामिल करें। भोजन में अनाज, दाल, दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं श्रोताओं, साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, सोयाबीन, मेवे, इन सभी चीज़ों को इनके उम्र के अनुसार बच्चों को देना सुनिश्चित करें। संतुलित भोजन से बच्चों का शारीरिक जो विकास होता है श्रोताओं, काफ़ी बेहतर होते चला जाता है। साथ ही साथ बच्चों को भोजन हमेशा साफ और ताजा दें। भोजन बनाने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले हाथ और साबुन से धो लें। पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करें। बर्तनों की साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। बच्चों को उनके उम्र के अनुसार दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन कराते रहें। उन्हें जबरदस्ती खिलाने के अपेक्षा प्यार और धैर्य से भोजन कराएं। भोजन के साथ फल और पौष्टिक नाश्ता भी दे, जिससे कि उन्हें पर्याप्त ऊर्जा और पोषण मिल सके। और श्रोताओं, बच्चों का टीकाकरण भी श्रोताओं बहुत ही जरूरी है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य की जांच, वजन और लंबाई के निगरानी भी करते रहे, जिससे कि बच्चों का सही तरीके से बढ़वार हो रहा है या नहीं, बढ़ रहे हैं या नहीं। यदि बच्चा आपको कमजोर दिखाई दे या बार बार बीमार पड़े तो तुरंत अपने जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो या चिकित्सक हो उनसे सलाह लें। और श्रोताओं, बच्चों को अधिक मात्रा में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट पैकेट वाले स्नैक्स, अत्यधिक मीठे जो खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर फास्ट फूड, इन सब चीज़ों को देने से बचें, क्योंकि इन चीज़ों से पेट तो भर जाते हैं परंतु इन्हें आवश्यक पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसकी अपेक्षा यदि घर का ताज़ा और पौष्टिक भोजन दे तो वो बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। और साथ ही साथ माँ का पोषण भी जरूरी है। जी हाँ श्रोताओं, माँ को स्वयं से भी स्वस्थ और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, तभी वो बच्चों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकती है।

स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त रूप से भोजन, हरी सब्जियां, दालें, दूध, फल और पर्याप्त पानी का लेना जरूरी है। बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं पूरे परिवार की होती है। पिता, दादा, दादी या अन्य सदस्य भी बच्चे को समय पर पौष्टिक भोजन दें, स्वच्छता को बनाए रखें, उनकी देखभाल में सहयोग करें, इससे बच्चे का विकास बेहतर होता है। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। जी हां श्रोताओं, महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले पूरक पोषण सेवाएं, नियमित वजन की जांच, पोषण परामर्श, टीकाकरण, इन सुविधाओं का भी लाभ ले। ये सेवाएं बच्चों में कुपोषण रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखा जा सकता हूं तो बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए उचित पोषण का होना जरूरी है। जन्म से ही स्तनपान, समय पर पूरक आहार, संतुलित भोजन, स्वच्छता, नियमित रूप से टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच यदि हो तो बच्चे निरोग और स्वस्थ रहेंगे। बच्चे जो है वो कुपोषण और कई बीमारियों से बचे रहेंगे। स्वस्थ और पोषित बच्चे जो है वो स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की नींव रखते हैं। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से बच्चों का पोषण का विशेष ख्याल रखना सिर्फ माँ के लिए ही नहीं पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो श्रोताओं, अब इसी चर्चा के साथ आइए हम आपको सुनवाते हैं पूनम सहाय से ली गई वार्ता।

और मानव जीवन का गहरा संबंध सदियों से बना हुआ है। यहाँ जल, जंगल और जीवन केवल पर्यावरणीय तत्व नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के आधार भी हैं। इन तीनों के बीच संतुलन ही देश की समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखता है। प्रकृति ने मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अनेक अमूल्य संसाधन प्रदान किए हैं, जिनमें जल, पानी और जंगल यानी कि वन सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही तत्व न केवल मानव के अस्तित्व के आधार हैं, बल्कि पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जीवन चक्र को भी संतुलित बनाए रखते हैं। जल, जंगल और जीवन का संबंध इतना गहरा है कि इनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। जल का महत्व। जल जीवन का मूल आधार है और मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है और इसके बिना जीवित रहना असंभव है। जल का उपयोग पीने, कृषि उद्योग, स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन जैसे अनेक कार्यों में किया जाता है। नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल हमारे लिए जल के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण जल संसाधनों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। जल का अंधाधुंध दोहन और जल स्रोतों का प्रदूषण भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जंगल का महत्व। जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वन जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख आधार है। यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी और वनस्पतियाँ निवास करती हैं। जल वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल स्रोतों को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का जीवन जंगलों पर निर्भर करता है। वे जंगलों से भोजन, औषधि, ईंधन और आजीविका प्राप्त करते हैं। जल, जंगल और जीवन का पारस्परिक संबंध। जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, जबकि जल जंगलों के विकास और संरक्षण में सहायक होता है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो वर्षा कम होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे और अंततः जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो जंगल भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जल, जंगल और जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बात हमारे देश भारत की जाए तो भारत में नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आदि न केवल जल का स्रोत है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में जल का महत्व और भी अधिक है। सिंचाई, पेयजल, उद्योग और बिजली उत्पादन में जल की अहम भूमिका है, लेकिन आज जल संकट, भूजल का अत्यधिक दोहन और नदियों का प्रदूषण और एक गंभीर समस्या बन

चुके हैं, वही भारत के वन जैव विविधता से भरपूर है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदर वन और मध्य भारत के वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके साथ ही लाखों लोग, विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका जंगलों पर निर्भर है। साथ ही यह भी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत के वन जैव विविधता से भरपूर है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदर वन और मध्य भारत के वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके साथ ही लाखों लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका जंगल पर निर्भर है। जब बात जंगल जीवन की हो रही है तो हमारा राज्य झारखंड भी प्राकृतिक संसाधनों के से समृद्ध एक राज्य है, जहाँ जल, जंगल और जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अत्यंत जीवंत रूप से दिखाई देता है। यहाँ के घने वन, बहती नदियाँ और आदिवासी संस्कृति मिलकर एक ऐसा पर्यावरणीय संतुलन बनाते हैं जो न केवल राज्य की पहचान है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। झारखंड में अनेक नदियाँ जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, बराकर आदि बहती हैं, जो यहाँ के लोगों के जीवन और कृषि का प्रमुख आधार हैं। जल का उपयोग खेती, पीने, पशुपालन और छोटे उद्योगों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तालाब, कुएं और झरने जल के मुख्य स्रोत हैं। जल के बिना यहाँ की कृषि और जनजीवन की कल्पना करना कठिन है। झारखंड को वनों की भूमि कहा जाता है। यहाँ शाल, शखुआ, महुआ, तेंदू, बांस जैसे पेड़ों की भरमार है। ये जंगल न केवल पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, बल्कि यहाँ के आदिवासी समुदायों की आजीविका का मुख्य साधन भी हैं। महुआ के फूल, तेंदू पत्ते, लकड़ी और जड़ी बूटियाँ लोगों के जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। जंगल यहाँ की संस्कृति, परंपरा और त्योहारों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। झारखंड के आदिवासी समुदाय जल और जंगल को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर आधारित होती है। सरहुल, कर्मा जैसे त्यौहार प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और आभार को दर्शाते हैं। वे जंगल और जल स्रोतों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। झारखंड में जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और नदियां व झरनों को जीवित रखते हैं। वही जल जंगलों को हरा भरा बनाए रखता है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो जल स्रोत सूख जाएंगे और इसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ का जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है। वर्षों में खनन, औद्योगिकरण और वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा बढ़ा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और जंगलों का क्षेत्र घट रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन और स्थानीय लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज के आधुनिक युग में विकास की दौड़ में ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ा दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। इन समस्याओं के कारण न केवल पर्यावरण असंतुलित हो रहा है बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। संरक्षण के उपाय, जल और जंगल के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। संरक्षण के उपाय, जल और जंगल को बचाने के लिए जागरूकता को और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग और सरकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन जरूरी है। साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही इन संसाधनों की रक्षा संभव है। जल और जंगल के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। जंगल और जल के संरक्षण के लिए सरकारी पहल,
सरकार ने जल संकट को देखते हुए कई योजनाएं शुरू की, जैसे जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। अटल भूजल योजना के माध्यम से भूजल स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है और तालाब, कुएं व जलाशयों के पुनर्जीवन पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वनों की सुरक्षा के लिए सरकार वन महोत्सव, हरित भारत अभियान

के माध्यम से जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा की जा रही है। सरकार स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है। स्कूलों और गाँव में पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग स्वयं भी प्रकृति की रक्षा में भाग लें। निष्कर्ष, सरकारें जल, जंगल और जीवन की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है। जब तक आम जनता इन प्रयासों में सहयोग नहीं करेगी तब तक पूर्ण सफलता संभव नहीं है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जल बचाए, पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा करें। भारत में जल, जंगल और जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है। इनका संरक्षण ही देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यदि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियाँ के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पूनम सहाय से ली गई वार्ता। विषय था जल, जंगल और जमीन, एक अभिन्न संबंध। और अब आइए जानते हैं आंगनवाड़ी केंद्र से लाभ। जी हाँ श्रोताओं, आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में, गरीब बस्तियों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और किशोरियों के लिए काफ़ी उपयोगी सेवा केंद्र माना जाता है। इस केंद्र की स्थापना का ही उद्देश्य था पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ जागरूकता फैलाना, जिससे कि समाज के कमजोर वर्ग को भी सशक्त किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ भोजन वितरण का स्थान नहीं है, यह बच्चों के सर्वांगीण विकास और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार का भी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यहाँ मिलने वाली सेवाएं परिवार को कुपोषण, बीमारी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं से यह जो आंगनवाड़ी केंद्र है बचाने का कार्य करती है। पोषण संबंधी लाभ की यदि हम बात करें श्रोताओं, तो आंगनवाड़ी का सबसे बड़ा लाभ पोषण सेवाओं के रूप में मिलता है। यहाँ पर छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज की प्राप्ति होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने वाले महिलाओं को यह सेवा जो है वो काफ़ी सहायक साबित होती है। नियमित रूप से पोषण मिलने से बच्चों में वजन कम होने, कमजोरी और कुपोषण की समस्या भी कम होते चली जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी उचित पोषण मिलता है, जिससे कि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रह सके। आंगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, जिससे कि उनका मानसिक विकास तेज होता है। रंग को पहचानना, गिनती गिनना, गीत कहानी और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में भाषा, स्मरण और समझने की क्षमता विकसित होती है। नियमित पोषण और देखभाल से उनका शारीरिक विकास भी बेहतर होते चला जाता है। इस प्रकार से देखा जा सकता हो तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी की आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर टीकाकरण, वजन की जांच, ऊंचाई माप, स्वास्थ्य परामर्श, बीमारी की पहचान संबंधित सुविधा यहाँ प्राप्त होती है। साथ ही साथ समय समय पर बच्चों की वृद्धि की भी निगरानी की जाती है, जिससे यह पता चल सके कि बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं। श्रोताओं, किसी बच्चों में कमजोरी, एनीमिया या कुपोषण के लक्षण जब दिखाई पड़ते हैं तो उसे स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी मदद करती है, जिससे कि बच्चा जो है वो गंभीर बीमारी से बच सके। आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी कारगर साबित होती है। यहाँ उन्हें पोषण, आराम, स्वच्छता और प्रसवपूर्व देखभाल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान

सही खान पान, आयरन फोलिक एसिड, नियमित जांच और सुरक्षित पशुओं के बारे में भी जागरूक किया जाता है। श्रोताओं, पशुओं के पश्चात स्तनपान, शिशु की देखभाल और माँ के स्वास्थ्य की भी सलाह दी जाती है। इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने में यह काफी कारगर साबित होती है। आंगनबाड़ी केंद्र से स्वच्छता के महत्व पर भी जोर दिया जाता है। बच्चों और महिलाओं को हाथ धोने, साफ पानी, शौच के उपयोग, भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में भी बताया जाता है। श्रोताओं, आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चे विद्यालय के वातावरण से परिचित हो सके, उनमें सीखने की आदत विकसित हो, अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान, चित्र पहचान, कविता, खेल और समूह गीत विधियों से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। श्रोताओं, साथ ही साथ महिलाओं की जानकारी और परामर्श भी यहाँ दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं के लिए जानकारी और परामर्श का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उन्हें परिवार नियोजन, बाल पोषण, टीकाकरण, किशोरियों के स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। कई महिलाएं स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सही जानकारी के अभाव में समस्याओं का सामना करती है, तो वैसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उन्हें सरल भाषा में समझाकर उन्हें जागरूक करती है। इससे महिलाएं अपने परिवार को बेहतर देखभाल कर सकती है। आंगनबाड़ी केंद्र कई सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। श्रोताओं, यहाँ से बच्चों और महिलाओं को पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। कई बार लाभार्थियों को योजना से जोड़ने, दस्तावेज तैयार करने और सेवाओं तक पहुंचाने में भी यह सहायता प्रदान करती है। इससे निश्चित रूप से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता जो है वो समय पर प्राप्त होती है। श्रोताओं, आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य और पोषण तक ही यह सीमित नहीं है, यह सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक सशक्त माध्यम है। यहाँ महिलाओं को एक साथ बैठकर सीखने, अपनी समस्याओं को साझा करने और समाधान पाने का भी अवसर प्राप्त होता है। इससे इनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका गांव या मोहल्लों में एक भरोसेमंद संपर्क बिंदु के रूप में काम करती है। इससे समूह में सहयोग और एकता की भी भावना बढ़ती है। श्रोताओं, यदि देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र समाज के लिए एक लाभकारी संस्थान के रूप में जानी जाती है, और इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं और माताओं को भी आवश्यक देखभाल के साथ साथ परामर्श, सलाह दी जाती है। स्वच्छता, टीकाकरण, जागरूकता और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से भी ये केंद्र कुपोषण और बीमारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर परिवार आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं का यदि सही उपयोग करे तो बच्चों का जो भविष्य है निश्चित रूप से श्रोताओं काफी उज्जवल होगा, और समाज अधिक स्वस्थ और शिक्षित के साथ साथ सशक्त बनेगा। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में या हमारे घर के आसपास जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वो हमारे परिवार के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि इसी संस्थान से हमें कई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो श्रोताओं, निश्चित रूप से यह आंगनबाड़ी केंद्र हमारे लिए काफ़ी लाभकारी संस्थान है, और इस संस्थान से जुड़कर या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी बात हो, पोषण संबंधी बात हो, धात्री की बात हो, बच्चों की बात हो, तो इन सब बातों को लेकर आप अपने नज़दीकी जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर संपर्क कर वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ इस जननी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में निभा सकती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। बुजुर्गों और दिव्यांगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का ऐलान, अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में पलाश दीदी कैफे का कारोबार 10 करोड़ रुपए के पार। 2000 से अधिक महिलाओं की आजीविका हुई मजबूत। और राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप झारखंड राज्य कुश्ती संघ के नए

0: बायलॉज को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, चुनाव का रास्ता साफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के जरिए पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से लिखे एक लेख को साझा किया है। इस लेख में वित्त मंत्री ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पों को बाजार तक पहुंच हासिल करने और स्थायी आजीविका सृजित करने में मदद कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से कोई भी नागरिक जानकारी के अभाव में वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों से गणना प्रपत्र भरने, आवश्यक दस्तावेजों और समय सीमा की सही जानकारी हर घर तक पहुंचाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बीएलओ को लगातार प्रशिक्षण देने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, आदिवासी समुदायों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक विशेष रूप से जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने आम लोगों से नागरिक मतदाता सूची में अपनी सही और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्री आज गिरिडीह स्थित अपने आवासीय कार्यालय में अपना एन्यूमरेशन प्रपत्र भरकर जमा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: एसआईआर की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए मैं तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि एसआईआर की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में एनुमरेशन फॉर्म भरने में थोड़ी शीघ्रता दिखाएं, तो मुझको उम्मीद है कि प्रबुद्ध मतदाता मेरी तरह अपना एनुमरेशन फॉर्म भर के इस प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करें।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मंत्री कल जामताड़ा सदर अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के बाद आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल हिंसा का नहीं बल्कि सेवा का केंद्र है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर धनबाद में युवा संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, स्वदेशी पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्यों समेत पंच परिवर्तन के विषयों पर चर्चा हुई।
2: हमारा पंच परिवर्तन का कार्यक्रम था संघ की ओर से, और पंच परिवर्तन में युवाओं का योगदान, अगर आप बोलते हैं कुटुंब प्रबोधन, अगर आप बोलते हैं कि स्व का बोध और सामाजिक समरसता की भावना, पर्यावरण का मैनेजमेंट, ये सारी चीज हमारे युवा वर्ग से की तरफ से आनी चाहिए, उनमें उनकी सहभागिता की बहुत आवश्यकता है।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि एक शिक्षित समाज ही मजबूत, जागरूक और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मंत्री आज रांची स्थित हज हाउस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रही थीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनएक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने को लेकर विपक्षी दलों की चिंताएं हैं।
3: झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा, तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं, किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं, तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे।
0: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि आज झारखंड में पलाश दीदी कैफे महिलाओं के आत्मविश्वास और उद्यमिता की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि आज 2000 से अधिक महिलाएं कैटरिंग और सामग्री आपूर्ति के माध्यम से अपनी आजीविका सशक्त बना रही हैं। मंत्री ने कहा कि यह पहल 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर नई सफलता की इबारत लिख चुकी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू से पूछताछ के बाद आज पुलिस ने जंगल से एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 90 जिंदा कारतूस और एक नक्सली पाउच बरामद किया है। पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान नक्सली ने छुपा कर रखे गए हथियारों के ठिकानों की सटीक जानकारी दी।
4: इनके द्वारा बताया गया कि कहां था उनके ये हथियार छुपा के रखे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने छापेमारी करके रविंद्र गंजू के पास से एक स्वचालित AK-56 राइफल के साथ इसकी 2 मैगजीन, 90 चक्र जिंदा कारतूस और एक काले रंग का पाउच बरामद किया है।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में भाग लिया। श्री सेठ ने मोरहाबादी के हरिहर सिंह रोड में योगामृत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज आगामी सावन पर्व को लेकर पहाड़ी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा स्थित महादेव साल धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने मेले के दौरान महादेव साल स्टेशन पर 22 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि ठहराव पाने वाली ट्रेनों में साउथ बिहार, उत्कल, इस्पात, समलेश्वरी, टाटा एनाकुलम और विभिन्न मेमू ट्रेनें शामिल हैं।
5: इसलिए रेलवे ने यहाँ पे 22 ट्रेनों का टेम्पररी स्टॉपेज दिया है। जो रेगुलर स्टॉपेज है उसके अलावा 22 ट्रेनों की स्टॉपेजेस रहेंगी। स्टॉपेजेस 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक है, जिसमें श्रद्धालु आराम से उतर सकते हैं और रिटर्न के समय वो दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। वहाँ पे एडिशनल बुकिंग काउंटर्स लगाए जा रहे हैं।
0: रांची में झारखंड राज्य कुश्ती संघ के स्पेशल जनरल बॉडी बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति और भारतीय कुश्ती संघ के नियमों के अनुरूप तैयार नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में सभी 24 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वर्ष 2026 से 30 के लिए संघ के चुनाव कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक में महासचिव रजनीश कुमार ने कहा कि नए बायलॉज लागू होने के संघ का संचालन राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप होगा और जिला इकाइयों में शीघ्र चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल आर्थिक विकास में निभा सकती है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। बुजुर्गों और दिव्यांगों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी का ऐलान, अस्पतालों में हिंसा करने वालों पर राज्य सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में पलाश दीदी कैफे का कारोबार 10 करोड़ रुपए के पार, 2000 से अधिक महिलाओं की आजीविका हुई मजबूत। और राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप झारखंड राज्य कुश्ती संघ के नए बायलॉज को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, चुनाव का रास्ता साफ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रविंदर गंजू को गिरफ्तार किया है। झारखंड सरकार ने इस पर 15 लाख रुपए एवं एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके पास से AK-56 समेत अन्य हथियार व गोली भी बरामद किया गया है। रविंद्र पर लातेहार, लोहरदग्गा एवं गुमला जिला के विभिन्न थाना में 154 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: आज रविंद्र गंजू जो RCM रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम NIA के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है।
1: वन विभाग द्वारा जिले के चंदवा प्रखंड में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रादेशिक वन प्रमंडल द्वारा इस वर्ष 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दौरान 150 ग्रामीणों के बीच धुआं रहित चूल्हा और सोलर लैंप का वितरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने कहा कि
3: लोग जो है कम से कम अब पेड़ लगाने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि भाई लोगों से मिले, उनको जागरूक करें। और
1: मौके पर उपस्थित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि
4: मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग कम से कम 5 पेड़ लगाएं और पौधों का संरक्षण करें। अनावश्यक पौधों को काटे नहीं, जंगल में आग नहीं लगाएं। महुआ चुनने के क्रम में आग लगा देते हैं, इससे काफी पौधे नष्ट हो जाते हैं।
1: लातेहार जिले के महुआ डान प्रखंड में भवन निर्माण विभाग एवं संवेदक के गठजोड़ से जामडी गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र भवन का निर्माण स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसे सेमरबुड़नी गांव में बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बताया जाता है कि सेमरबुड़नी में पूर्व से ही स्वास्थ्य केंद्र है। इस मामले पर सोहर पंचायत की मुखिया अमृता देवी ने उपायुक्त से मिलकर आवेदन दिया है। मुखिया अमृता देवी ने कहा कि
5: जामडी में उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनना था उसको यहाँ सेमरबुड़नी में बनाया जा रहा, जबकि वहाँ पूरे माल मटेरियल सब वहाँ गिरा दिया था, दो दिन भी हो गया था। पूरा केसिंग उसे निकाल करके ला करके लोग यहाँ बना रहा है सेमरबुड़नी।
1: लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित सीमा सुरक्षा बल की 32वीं वाहिनी द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर समेत अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि
6: गृह मंत्रालय की योजनाओं के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस इलाके में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर सीख सकते हैं, उनको हम बेसिक सिखलाई कंप्यूटर का प्रदान करें ताकि उनको रोजगार का कोई ना कोई साधन हो।
1: लातेहार जिला मुख्यालय के धर्मपुर में स्थित महिला मॉडल डिग्री कॉलेज की हालत बदहाल है। यहां दो शिक्षक के भरोसे 500 से अधिक छात्राओं की पढ़ाई चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुरेंद्र साहू ने कहा कि
7: शिक्षकों की जरूरत है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई सार्थक पहल दिखाई नहीं दे रही मेरी।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 7:15 हो रहे हैं दोस्तों। ये वक्त है हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पुष्पा सहाय की कुछ कविताएं और दिलीप तेतरवे की कहानी। प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड के दो साहित्यकार पुष्पा सहाय गिन्नी और दिलीप कुमार तितरवे को हम सुनेंगे। पुष्पा सहाय गिन्नी जहां अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्री मन और संवेदनाओं को उकेरेंगी, वहीं दिलीप कुमार तितरवे कहानी के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की विवशता और जन सरोकार के प्रति प्रतिबद्धता को सामने रखेंगे। मित्रों, स्त्री का जीवन प्रेम, करुणा, समर्पण, कोमलता और सामंजस्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। यही उसके जीवन को एक तरफ अर्थपूर्ण बनाता है तो दूसरी तरफ
1: से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब लीजिए पेश है कार्यक्रम स्वरांजलि।

नशे इकहरे ही अच्छे होते हैं। सब कहते हैं दोहरे नशे अच्छे नहीं, एक नशे पर दूसरा नशा ना चढ़ाओ। पर क्या कीजिए, एक कबीर और उस पर आबिदा परवीन। सुर सरूर हो जाते हैं और सरूर देह की मट्टी पार करके रूह में समा जाता है। सोई मेरा एक तो और न दूजा कोय, जो साहिब दूजा कहे दूजा कुल का होए। कबीर तो दो कहने पे नाराज हो गए, वो दूजा कुल का होए।

स्वरांजलि के तहत अभी आप सुन रही थी आबिदा के स्वर में कबीर की कुछ रचनाएं। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम महुआ। आइए सुनें जनक सिंह भारती और साथियों के स्वर में कुछ नागपुरी लोकगीत।

भरत सिंह भारती और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। इसी के साथ महुआ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

चित्रपट से कार्यक्रम के तहत अभी हम आपको सुनवा रहे थे सिलसिला फिल्म के गाने। आवाजें थीं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की। और अब आइए सुनते हैं फिल्म कस्मे वादे फिल्म के कुछ गाने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब जो गाने हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म प्रेम ग्रंथ से। आइए सुनते हैं।

प्रेम ग्रंथ फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और विनोद राठौर की। और अब आइए सुनते हैं साजन फिल्म का ये नगमा, जिसे गाया है अनुराधा पाड़वाल ने।

अनुराधा पाडवाल की आवाज़ में साजन फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 बजने को हैं। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए

0: राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, वी हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility. But in our house, it has become regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: Which would help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होमस्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में

0: to successfully defend the FIFA World Cup title after Brazil in 1958 and 1962. On the other hand, Spain will be aiming to lift their second FIFA World Cup trophy after 2010. They lifted their first trophy on home soil in 1978, followed by 1986 and 2022. For Argentina, Messi is the outright hero, leading by 8 goals and 4 assists, which also makes him the front runner for the Golden Boot. Lautaro Martinez with 3 goals and Enzo Fernandez with 2 have also played important role in Argentina's attacking masterclass. Mikel Oyarzabal has been Spain's top scorer at this World Cup with 5 goals, including one in their semi-final win over France. Rodri has dominated midfield with a tournament-high 648 completed passes, while Lamine Yamal, returning from injury, has yet to hit top form but remains a constant threat out wide. Shagun Chopra, Akashwani News.
1: Earlier, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium last night. French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. Meanwhile, several Indian cities, states including Kerala, Manipur, Mizoram and Meghalaya have declared holiday in schools and higher educational institutions for tomorrow after demands by students and political leaders. They cited the late night schedule of the finals and concerns over attendance and travel after the game. And in men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, Shubman Gill led Indian side with 93 for no loss in 16 overs when reports last came in. Opting to bat, England scored 387 runs at the loss of 3 wickets in 50 overs. Players from both the team were wearing black armbands and observed a minute silence to honour the legendary West Indies all-rounder Sir Garfield Sobers, who recently passed away. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre-long Rameshwar-Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, flash floods following heavy rain claims 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, hosts England set 388 runs target for India in the third and the final ODI at Lord's. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले जो कल से शुरू हो रहा है कल कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज ओडिशा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जाने चली गई। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी ओडीआई में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे जिन पर बहस मुबहसा होगा। मानसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवू श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
2: सुने। टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदु किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बायकॉट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ओपोजिशन पार्टियों की स्कूल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी बीएसी की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहस व मुबाहिसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकाम के माबेन बिला रुकावट रबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इक्तसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरां, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इक्तसादी मकाम और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रबता होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से रजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मौखिर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। नदियों की दुगयानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या गरकाब हो गईं। मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव की टीमें मुतासिरा कुनबों को महफूज मकामात पर ले जाने और नुकसानात का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड में आज से बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जानें भी जाय हुई है। मोन जिले में अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए और बहुत से घर बह गए। नागालैंड की कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली रियासती अथॉरिटी के जॉइंट सीईओ जॉनी रंगमे ने आकाशवाणी के हमारे नामनिगार को बताया कि 3 खवातीन और 1 शख्स समेत 4 मुतासरीन की लाशें बरामद कर ली गई हैं और बकिया 5 की तलाश की जा रही है। नगीनी पोड़ा में 4 अफराद को जो मलबे में दबकर शदीद जख्मी हो गए थे बचा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि गैर मुतअद्दी अमराज मुल्क में सेहत आम्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निमटने के लिए अवामी सतह पर एक तहरीक शुरू करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे के साबिक सीनियर मुशीर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता की तसनीफ अनब्रोकन माई बैटल विद कैंसर एंड द विल टू लीड के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोल्दोवा और रोमानिया के सफीर डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू का इन दो मुल्कों का दौरा तारीखी नौयत का होगा। डॉक्टर महापात्रा ने प्रसार भारती से बात करते हुए कहा कि भारत और मोल्दोवा के दरमियान गर्म जोशी पर मबनी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दौरा एक अहम और तारीखी संग मील साबित होगा, जिससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात एक वसी तर शराकतदारी में बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के बाद दोतरफा इकतसादी शराकत दारी से आइंदा बरसों में ये ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 3 मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मोल्दोवा पहुंचेंगी। ये किसी भी भारतीय सदर का मोल्दोवा का पहला सरकारी दौरा होगा। इस दौरान सदर जमहूरिया मोल्दोवा की सदर माई सैंडी से मुलाकात करेंगी और वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो मोल्दोवा भारत बालेमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से मुलाकात, एक कारोबारी फोरम से खिताब और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। दौरे के दूसरे मरहले में मोहतरमा मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक शिमाली मकदूनिया में रहेंगी, जबकि अपने दौरे के आखिरी मरहले में वो 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया का दौरा करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले को मनमाना करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्करना का ने कहा कि वांगचुक को फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के किसी फौरी हुक्म की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स उनकी हालत पर करीबी नज़र रख रहे हैं और उनका इलाज मुआवजा उनकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। अदालत वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की एक दरख्वास्त की समाहत कर रही थी, जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। अमरीकी फ़ौज ने आज ईरान पर फजाई हमले किए, जिनमें ईरान के नीम फौजी दस्ते सिपाह पासदारन इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों में ईरान की साहिली निगरानी, फजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि पहली मरतबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी, जो ईरान के मजहबी निज़ाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल रखती है। ایران نے امریکی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں. امریکی فوج مہم اب آٹھویں روز میں داخل ہو چکی ہے. دونوں ممالک آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں.

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सरकर्दा खातून बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय के तौर पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन की तारीख में ये कामयाबी एक अहम संगमील है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने सिंधु की इस हुसूलियाबी को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस कामयाबी से कौम को फख्र हासिल हुआ है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया। वजीर अजम ने कहा कि सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अजम और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी ये कामयाबी निहायत अहम है। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज रात अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा, जिसमें दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अर्जेंटीना का शुमार कामयाब तरीन टीमों में होता है, जो 3 मरतबा आलमी खिताब जीत चुका है। लियोनेल मेसी की क्यादत में अर्जेंटीना की टीम ब्राज़ील के बाद पहली ऐसी टीम बनने की कोशिश करेगी जिसने मुसलसल दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्राज़ील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा आलमी खिताब जीतने के अजम के साथ मैदान में उतरेगी। मर्दों की क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में खेले जाने वाले 3 एक रोज़ा बैन अलावा मैचों की सीरीज के तीसरे फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 20 ओवर्स में बगैर किसी विकेट के 109 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। और आखिर में खास खबरों का खुलासा। एक बार फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल, जो कल से शुरू हो रहा है, कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुशुसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज उड़ीसा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गईं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: श्रोताओं नमस्कार। हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं।
1: तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
1: ओ नीरज नैना आजरा आजरा।
0: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम उनके उपनाम नीरज से पहचानते हैं, वही नीरज जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: नई उम्र की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनके फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते, उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से

में दुनिया की चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी, तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूँ, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ

0: मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देव आनंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देव आनंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द रंगे

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुँचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हूक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

नीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

भाव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।

नीरज एक अनोखे इंसान रहे। जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।

हालांकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

नीरज का इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने इस संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आपने उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाज़ों में मन फिल्म का ये गीत सुना।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी ये मोहब्बत है। आइए सुने प्रोग्राम का अगला गीत।

शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में आप सुन रहे थे दीवानापन फिल्म का ये नगमा। और अब आइए सुनते हैं अक्स फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सुखबिंदर सिंह और वसुंधरा दास ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुने अगला गीत। फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म लोफर का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और इसकी धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। और इसी गाने के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people ties. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometre long Rameshwar-Paradip Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys. The Delhi High Court today refused to intervene in activist Sonam Wangchuk's treatment at Safdarjung Hospital, saying the government's decision to move him from Jantar Mantar to the hospital could not be termed arbitrary. Justice Mini Pushkarna said no immediate order was needed to shift Wangchuk to a private facility, while noting that doctors were monitoring his condition and had provided treatment with his consent. The court was hearing a plea by Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, seeking his transfer to a private hospital. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in New Delhi district in view of Parliament session beginning tomorrow. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is in force in the area, hence protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. In Jammu and Kashmir, at least 11 people were killed and 7 others went missing as torrential rains triggered landslides and flash floods in the twin border districts of Rajouri and Poonch early this morning. In men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, India were 278 for 2 in 41 overs when reports last came in. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।